يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है, और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस वार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ऐ करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فدعوه
0: صلى الله عليه وآله وسلم کے صفحے میں قبول فرما آمین یا رب العالمين
1: ولله

0: 101 FM。
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101, Nal Nal Sade te Nal Nal Tuade. क्यों जी, कोई शक है क्या?

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: And now you are tuned into
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101. 101. 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Love you, Pakistan. Pakistan.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा।

0: सुनते रहिए FM 101
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: 101 FM。
1: I'm on the way, बस आधा घंटा दे।
2: सेल्फी डालने का।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मक्का मुआहदे के तहत मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का 5वां यौम शहादत मना रहे हैं। और मारूफ मुसव्वर अहमद सईद नागी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

暴れない FM。

0: क्या बताऊं यार, मैं वो लाइफ।
1: दिस इज 101% प्योर। यू आर ट्यून्ड इनटू द वन अबव 101 एफ।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

जिंदगी के रंगों को खूब एंजॉय किया जा रहा होगा और वहाँ उस एंजॉयमेंट में FM 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। ये बिल्कुल मैं आपके साथ आपकी अपनी RJ ज़ुबैर शफीक

0: अबे हेलो हेलो जी जी जनाब, 11:08 हो चुके हैं और मेरा आपका साथ रहा करता है हर मंगल की सुबह 11 से 1। और कभी कभी हो जाता है ऐसे, जब गर्मी एक्चुअली इतनी ज़्यादा है कि गर्मी जैसे जैसे वक्त और मंथ गुजरते जा रहे हैं, कहते हैं जून जुलाई के बाद जो है वो एक सिलसिला चेंज होने शुरू हो जाता है, लेकिन ये तो चेंजेस थोड़ी मुख्तलिफ सी हो गई हैं। अगस्त का महीना भी गुजर गया लेकिन उसके बावजूद गर्मी की शिद्दत पीक पकड़े हुए है, और इस गर्मी की वजह से ही बंदा वो बौंतर जी नहीं जानता, बौंतर जी गई है। 11:09 हो चुके, पोस्ट अपडेट कर चुकी है, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे और वहाँ जाके कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इसके अलावा मुझे मैसेज कर सकते हैं 4471 पे, जाइएगा अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में 101 स्पेस नाम पे कमेंट सेंड कर दीजिएगा 4471 पे 0422111001। ऑफ कोर्स हमारा डायलिंग नंबर है जिस पे आप मुझे कॉल कर सकेंगे और साथ दे सकेंगे हमारा। यहाँ पे कलाम चलाऊंगी
1: जी, मेरा दिल पर सोना,
0: इसको एंजॉय कीजिएगा।

0: आप सुन रहे हैं FM 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर

0: Love you, Pakistan.
1: आप सुन रहे हैं FM 101।
0: वेलकम बैक, दिस इज FM 101 लाहौर लाइव स्टूडियो। इट्स मी ज़ुबैर शफीक और आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और लेडीज लाउंज में हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे बदलते मौसम के हवाले से। और मौसम के बदलने के साथ बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। अक्सर लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, गला ख़राब, इन्फेक्शन इस तरह के। लेकिन बाकी के इन्फेक्शन एक साइड पर, लोगों को बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। बुखार होने की बेसिक वजह ये है कि मौसम में नमी बहुत ज़्यादा है। पानी जितना भी आप पी लो लेकिन आपको प्यास महसूस होती रहती है। इसके साथ साथ मौसम की नमी की वजह से आपके जो कूलर्स, जो लोग रूम कूलर्स यूज़ करते हैं ना, रूम कूलर्स, ये वो मौसम होता है जिस मौसम में रूम कूलर्स जो है वो बिल्कुल भी ठंडक नहीं फराहम करते, वो बल्कि एग्जॉस्ट कर देते हैं, वो एक घुटन सी कर देते हैं। इस सारे स्नेरियो में ये जो पानी वाली हवा होती है, यानी कि जो आप कूलर्स में पानी डालेंगे और उसके बाद जो है हवा लेते हैं, वो आपको क्या करती है, आपको मज़ीद लेथार्जिक कर देती है। आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाती है, आंखों में दर्द शुरू हो जाती है और घुटन फील होने लगती है। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि इस मौसम में ना कोशिश किया करें कि आप ना पानी ना डालें कूलर में। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये होगा कि वो जो बहुत सी सफोकेशन सी होती है ना, वो नहीं होगी। और सेकंड ये होगा कि आपको जो वो एक नमी वाली हवा होती है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके जॉइंट पेन और लेथार्जिक फील होता है, वो भी नहीं होगा। ये दो चीज़ें हैं। जिनके कूलर्स बाहर, मतलब बाहर वाली साइड पे लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये है। जिनके कूलर्स जो हैं वो आपके घर में ही मौजूद हैं, वो एक और चीज़ कर सकते हैं। उसमें ये है, वो कूलर्स की जो वो खिड़कियाँ होती है ना, उन खिड़कियों को भी उतार, डायरेक्ट हवा जो होती है ना वो आपको अच्छी बेहतर रहेगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी जो है वो उस बॉटल में डाल लें, बिल्कुल हल्की सी, और उसको मिक्सअप करके सारा दिन तकरीबन वो पानी, आपको कोई इतने ज़्यादा वो डिटॉक्सी जो वाटर होता है ना, जो आप कहते हैं कि आपके टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए आप वो वाटर बनाते हैं, डिटॉक्स वाटर, वो डिटॉक्स वाटर बनाने की इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नमक और जस्ट चीनी, आपने ये दोनों चीज़ें मिक्सअप करनी है और फिर आपने सारा दिन उसको पीना है। प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल कोशिश करें कि आप कम करें या ना करें, बिकॉज प्लास्टिक के बोतल में जब आप पानी डालते हैं या अगर आप उसमें पानी पीते हैं तो वो एक दिन के बाद उसको वेस्ट कर दें। सेकेंड डे आप नई बोतल यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल जो होती है वो बहुत हार्मफुल होती है आपके लिए। ख़वातीन की अगर हम बात करें तो ख़वातीन के लिए एक ये है कि आप इस मौसम में जो है ना, कोशिश करें कि इतने ज़्यादा कोई स्पाइसी, तीखे, बहुत ज़्यादा ऑयली खाने ना बनाएं। थोड़ा सा सादगी पर तवज्जो दें, सादा ग़िज़ाओं को। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि आपने टिंडे तोरियाँ बनाई हैं तो आपने उसी अंदाज से बनानी है। आप टिंडे तोरियों को भी एक नए अंदाज से बना सकते हैं ना। अच्छा, मैं अभी लौकी की एक डिश देख रही थी तो उसमें वो क्या करते हैं, वो लौकी को क्रश करते हैं और उसको बेसन के साथ मिक्स करके उसके अंदर आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट जो आपको पसंद आए, आप दरा मिर्च डालो, नमक डालो, आप मिर्च डालो, ग्रीन चिली डालो, आप उसमें धनिया वगैरह सब कुछ डाल के आप उसके पकौड़ों की तरह के वो बना लेते हो और उसके बाद वो आपके बड़े मज़े से के कोफ्ते बन जाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। तोरियां जो होती हैं, इसकी सब्ज़ी मैं देख रही थी, तो आपके पास आप जब भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हो या आप कोई भी चीज़ देख रहे होते हो ना, तो एक एंगल चेंज होता है ना हर चीज़ का। आप उस चेंज एंगल से देखोगे ना, आपको हर चीज़ में यूनिक कुछ ना कुछ नज़र आएगा। उसने क्या किया, उसने उसको फ्राई किया, लाइट सा फ्राई किया और उसके बाद उसको मैश कर दिया, वो तोरियों को मैश कर दिया और मैश करके फिर उसने उसके बाद उसको बनाया। तो वो भी बड़ी एक डिफरेंट सी, यूनिक सी मुझे एक तरीका चेंज थोड़ा सा नज़र आया। हालांकि उनका उनका जायका बड़ा अच्छा होता है, मुनफरिद सा जायका होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने थोड़ी सी, अच्छा यहाँ भी एक और चीज़ को एड डाउन करूँगी मैं, वो क्या थी, नई सब्ज़ी का नाम था, वो मेरे जहन से अब निकल गया, जैसे ही आता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो बड़ा मेरी ना अम्मा ने रोला डाला हुआ था, उन्होंने भी कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया तो कहती हैं वो ला के दो। خیر وہ عام سادی دکانوں سے تو مل نہیں رہی تھی. میں ایک گروسری اسٹور پہ گئی اور وہاں سے وہ مجھے مل گئی. جب میں نے گھر آ کے اس کو کھایا وہ ٹینڈوں کی طرح اس کا ذائقہ تھا. میں نے کہا یہ صحیح ہے نام بدل کے جو ہے نا وہ مہنگی چیزیں بیچنا شروع کر دو اور مہنگی چیزیں لانا شروع کر دو تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہیں. یہاں بھی ایک اور چیز میں آپ انکلوڈ کرنا چاہوں گی, سوری میرے ذہن سے نکل گیا. آسیہ خان کا ہمیں کال آیا تھا, ان کے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ میری میں کوشش کروں گی کہ میری میں آن ایئر کال کروں لیکن اگر میں نہ کر سکی تو پھر میرا یہ میسج ضرور دے دیجیے گا کہ سب میرے بھائی کے لیے دعا کرے کہ شاید کسی کی آمین سے وہ ٹھیک ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو ایک تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے. اور جس ٹائم پہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, آج تھوڑا سا ٹاپک بھی میں اس سے ریلیٹ کرتا ڈسکس تو کریں گے, جب کوئی بیمار ہوتا ہے, جب کوئی پریشان ہوتا ہے یا جب کوئی ایسے سچویشن میں ہوتا ہے جس وقت اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, ناٹ ان دی سینس آف پیسہ, پیسہ ضروری نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس بات سے, لیکن اس ٹائم پہ آپ اس انسان کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہو نا تو اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. جیسے کسی کا کوئی جانے والا چلا جاتا ہے زندگی سے لیکن اس وقت میں جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں نا, جو لوگ اس کو اس کا حال پوچھتے ہیں یا اس کے ساتھ رہتے ہیں, ساری زندگی وہ لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں اکثر کہتی ہوں کہ میرے ابا کی جب ڈیتھ ہوئی تو میری کانٹیکٹ لسٹ سے 1000 میں سے نمبر جو ہے نا وہ 10 پہ آ گئے تھے. میں نے 990 لوگوں کو ڈلیٹ کر دیا تھا. تو زندگی میں بہت سارے لوگ ڈلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے مشکل وقت میں. کہنے کو تو سب لوگ ساتھ چلتے ہیں لیکن وقت پہ جو ہوتا ہے پتا چلتا ہے آپ. اینیویز سنیے خوبصورت سا ٹریک اور پھر ہم واپس آتے ہیں. میرے خیال سے یہاں پہ ہمارے پاس ایک شارٹ سی کمرشل بریک ہے, ہم اس کمرشل بریک کو پہلے چلائیں گے, اس کے بعد سانگ لگائیں گے تاکہ سانگ کو کمرشل انٹرپٹ نہ کرے اور کمرشل کو جو ہے وہ سانگ انٹرپٹ نہ کرے. اور یہاں پہ ہم ایک بھرتے ہیں ایک عدد شارٹ سی کمرشل بریک کی طرف اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹک اراؤنڈ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 101.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
3: This is FM 101.

वेलकम बैक, दिस इज़ एफ एम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबैर शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज़ लाउंज। और यहाँ पे टाइम हो चुका 11:34, और जहाँ पे मैं कह रही थी ना मसाइल आ रहे हैं, मसाइल इस लूप में आ रहे हैं, ये लूप में मसाइल आ रहे हैं, वो जो मेरी आवाज़ के मसाइल थे ना वो इस लूप में थे। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि रिश्ते में जब कभी आपकी किसी के साथ कोई परेशानी में होता है, कोई मुश्किल में होता है, तो उस वक्त पे ना जो लोग साथ देते हैं वो याद रह जाते हैं, और जो लोग साथ छोड़ते हैं वो भी ऑफ कोर्स याद रह जाते हैं। कुछ लोग साथ इतना नहीं देते, बातें ज़्यादा सुनाते हैं कि हमने बहुत साथ दिया तुम्हारा उस वक्त पे। ऐसे लोगों के साथ से थोड़ा सा जो है ना वो गुरेज किया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला दोस्त हो। बाज़ लोग जो है वो बस दिखावा करने के लिए आते हैं, तो इंसान को बेहतर पता चल जाता है। आज ना मैं सोच रही थी, डिफरेंट टॉपिक्स थे मेरे माइंड में कि मैंने आपसे पूछना क्या है, किस टॉपिक पे हमने बात करनी है, लेकिन जो टॉपिक एंड ऑफ द टाइम जो जीत गया ना वो ये था। मुझे, मैं सोच रही थी, मॉर्निंग का हमारा प्रोग्राम होता है, थोड़ा सा चेंज भी होता है, थोड़ा सी भीड़ थोड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन अक्सर औकात मुख्तलिफ क्वेश्चंस को मुख्तलिफ नोट में मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो है वो पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं उस पर। मैं सोच रही थी दो में तीसरा कौन होता है, और दो लोगों में तीसरे को लाने वाला कौन होता है। पॉइंट है ना, अगर दो लोगों में कोई तीसरा आया तो क्या दूसरा मौजूद था? बताएं, दूसरा मौजूद था। और अगर कोई तीसरा आया तो गलत कौन था? पहला गलत था जिसने स्पेस दी, दूसरा गलत था जो लेकर आया, या तीसरा गलत था जिसको सब कुछ पता था लेकिन उसके बावजूद वो इंटरप्ट हो गया बीच में? ये छोटा सा सवाल है मेरा, ये आपने बताना है। हमने ना आजकल बहुत सारी चीज़ें इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट को बीच में डाल के, हमने दुनियादारी के कॉन्टेक्स्ट को बीच में डाल के, हमने ना उनको मर्ज कर दिया, और मर्ज करके दूसरों की दिलाज़ारी करते हैं। हम उसको मर्ज करके कहते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं। अगर हम ख़वातीन की बात करें या मर्दों की बात करें, तो मर्दों के पास एक बहुत बड़ा ये कहने को बात होती है कि मैंने ज़िंदगी में अगर कोई नेक्स्ट कदम उठाया है तो वो अपनी औरत की वजह से उठाया है, वो उस खातून की वजह से उठाया जो मेरे घर में मौजूद है, वो मुझे टाइम नहीं देती थी, या वो जो है वो मेरी केयर नहीं करती थी, जबकि उस केयर में वो उसके बच्चों की केयर कर रही होती है, उस केयर में वो उसकी ख़ानदान को पाल रही होती है, उसके घर को संभाल रही होती है सुबह से शाम तक। नो डाउट हम इस एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे कि ख़वातीन कहाँ पर गलत होती है, लेकिन इस गलती में सबसे ज़्यादा गलती किसकी है ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। होती है उस केयर में वो उसकी खानदान को पाल रही होती है, उसके घर को संभाल रही होती है सुबह से शाम तक। नो डाउट हम इस एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि ख़वातीन कहाँ पे गलत होती है,

0: एक्सपोज हो गए एक्सपोज, तो वो सामने वाले पर्सन पे वैसे चढ़ाई कर देते हैं।
1: अरे रे।
0: वो कह देते हैं कि जी तुम पूछने वाले कौन हो, मेरी एक फ्रेंड है तो वो कहती हैं कि एक दफ़ा उनके हस्बैंड का मोबाइल उन्होंने पकड़ लिया और उस मोबाइल को पकड़ने के चक्कर में जो है ना वो बीच से कुछ डेटा निकल आया किसी खातून से बात करने का। तो कहती मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भाई ये कौन है, वो कहते हैं मेरे को लो पूछ के तो मोबाइल खोले सी जा उन्होंने कोई हो। तो वो क्या कहते हैं कि 101 बहाना होता है मर्दों के पास, 101 चीज़ें होती हैं उनको, अगर उन्होंने आपको डिच नहीं करवाना ना तो नहीं करवाना, और अगर करवाना है ना तो आपकी आंखों के सामने सब चीज़ें हो रही होनी और आपको भनक भी नहीं लगेगी, जहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं ना होना कि ये आपका आपका वहम भी नहीं जाएगा कि ये चीज़ हो सकती है, वहाँ पे चीज़ निकल आती है। तो ख़वातीन के लिए आज का प्रोग्राम स्पेशली लेडीज़ लाउंज ख़वातीन के लिए है, उन ख़वातीन के लिए जो अपनी ज़िंदगियों को अजाब बनाए हुए होती हैं इन सारे मामलों में उलझा के। उस टाइम पे करना क्या चाहिए, अगर सपोज दो में तीसरा इंसान आ गया तो फिर क्या आप अपनी जगह छोड़ देंगी या फिर क्या करेंगी, या फिर आप जो है वो समझौता करेंगी, या फिर आप कहेंगी कि नहीं नहीं नहीं नहीं एनु हुन ये जो आया है इसको जाना चाहिए, क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक अदद गाना लगा रहे हैं आतिफ असलम का, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कमेंट करेंगे, कमेंट करके शामिल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स 04211100101 ओवर डायलिंग नंबर। जिशान का हमें मैसेज आया और जिशान कह रहे थे मेरी वालदा के लिए भी दुआ कीजिएगा, उन तमाम के लिए बहुत सारी दुआएं, माओं के लिए, आपके वालिदैन में अगर कोई बीमार है, बहन भाइयों में, आपके दोस्तों में जो भी बीमार है, अल्लाह पाक उन तमाम को सेहत दे, बिकॉज़ ज़िंदगी में सेहत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज्वाइन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ये शमीम आपी अगर हमें सुन रही हूँ, बाद में उन्होंने कहना है कि ये गाना आतिफ असलम का लगा दो, ये मैंने आपके लिए लगा दिया। पूछ रही हूँ मैं दो लोगों में तीसरा आने वाला जो है उसको गुंजाइश कौन देता है, दो में तीसरे आने वाले को गुंजाइश फर्स्ट पर्सन देता है जो आने देता है, सेकंड देता है जो मौका देता है, और या थर्ड खुद ही, कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं ना सब जानते हुए खुद ही जो है वो मर जाने की कोशिश करते हैं।

जी, वेलकम बैक. दिस इज एफएम वन वाला हॉल लाइव स्टूडियो. इट्स मी जुबिया शफीक. आपका प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज. और लेडीज लाउंज में आज हम बात करें, हनीफ साहब की अभी कॉल आई, अभी कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जुबिया बहुत ही गहराई में जाके आज प्रोग्राम कर रही है. पहले कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ. मैंने कहा कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर लेनी चाहिए जो पहले नहीं हुई. पॉइंट ये है कि हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, ज्यूम करते हैं. बाज़ दफ़ा हम परसों की कल गालबन कल मेरी बात हो रही थी एक फ्रेंड से, तो वो बात कर रही थी कि सब्जेक्ट की बात हो रही थी कि आपके बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट समझा नहीं जा रहा. आपको लगता है बस ये एवं कोई बात है, लेकिन हम अपनी अम्मियों की बात करें या हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो उन्होंने प्रॉपर बच्चों की परवरिश करना आपकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है. बिकॉज आपका बुढ़ापा जो है वो उस पर इन्हसार होना है अनडाउटेडली. आपने जो आज अपने बच्चों को देना है वो कल आपको वापस मिलना है. आपके घर में आप अपने बच्चों की बच्चियों की तरबियत क्या कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कल को वो अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे. अगर बेटियां हैं तो वो अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से बात करेंगी, वो अपने ससुराल में किस तरह से बात करेंगी, वो उनकी इज्जत किस तरह से करेंगी, वो उनकी बात का असर किस तरह से लेंगी, या वो उनको रिस्पेक्ट किस तरह से देंगे. और अगर बेटे हैं तो वो अपनी बेगम से, वो अपनी वाइफ से किस तरह से बात करेंगे, वो अपने ससुराल से किस तरह से बात करेंगे, वो इवन तो अपनी बच्चियों को आगे इज्जत किस तरह से देंगे, ये सब कुछ वो अपने माँ बाप से सीखेंगे. अगर आज आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना और आपका छोटा बच्चा देख रहा है, वो बात नहीं कर सकता. बाज़ दफ़ा बच्चे उसका एक वो एज होती है जिस टाइम पे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों की जो परवरिश है ना वो 2 से 7 साल के दरमियान में उस पर जोर लगा दें. हम क्या करते हैं उस 7 साल की उम्र तक गौर ही नहीं करते हैं, उसके बाद गौर करना शुरू करते हैं. 7 साल तक तो वो सीख चुका बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद तो वो पुख्तगी आनी है उसमें. आप 7 साल तक उसको जो सिखाएंगे 7 के बाद वो उसको आपके सामने दिखाना शुरू करेगा, इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा. बच्चा बात करता है ना, हमने देखा है पख्तून का बच्चा पख्तून बोलता है, अंग्रेज़ का बच्चा अंग्रेजी बोलता है, बलोच का बच्चा बलोची बोलता है, पंजाबी का बच्चा पंजाबी बोलता है. क्यों बोलता है भाई, हमने उसे कहाँ सिखाया? वो पहला लफ्ज़ जो बोलता है वो उस जुबान में बोलता है जो जुबान उसके इर्द गिर्द बोली जा रही होती है. अगर आप बच्चे को मोबाइल फोन देते हो वो मोबाइल फोन की जुबान सीख जाएगा ना. आप अगर पंजाबी के बच्चे को अंग्रेज घर में रखोगे तो वो अंग्रेजी बोलेगा ना. क्यों बोलेगा? जिस दिन वो पहला लफ्ज बोलेगा वो अम्मी बोलेगा, माँ बोलेगा या ममा बोलेगा. वो उस सिनेरियो में बोलेगा जो उसके इर्द गिर्द बोला जा रहा है. हमने कभी ये नोट किया? हमने तो ये नहीं इसे सिखाया था, लेकिन इससे पहला लफ्ज जो बोला है वो बोला है जो कि हम बोल रहे थे. इट्स मीन दैट कि आप 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे को सिखा रहे होते हो. जबकि आपकी इंटेंशन वहां पे नहीं होती. तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो परवरिश एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है माओं के लिए. जो माएँ घर में रहती हैं ना, जो जॉब नहीं करती, जॉबियन के लिए तो एक अलग सब्जेक्ट है ना. उन्होंने टाइम जॉब को भी देना, फिर घर को भी देना, बट जाती हैं चीज़ें जो घर में माएँ रहती हैं. और मैं अक्सर अपनी फैमिली में भी बात होती है तो मैं बात करती हूँ कि यार आप लोग घर में रहते हो तो बच्चों को एटलीस्ट इतनी अच्छी तरबियत दें कि जब वो बात करें उनके बात करने से आपकी तरबियत झलके. और झलकनी चाहिए. ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप सिखाएं बच्चा सीखे ना. हम जो सिखाते हैं वो बच्चे सीखते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं. एनीवेज बात किसी और साइड पे चल गई. आज पता नहीं क्यों मैं इतनी समझदार हूँ बातें कर रही हूँ. चलें थोड़ी बहुत कभी कभी समझदारी की बातें भी कर लेनी चाहिए. आप जी हमें ज्वाइन कर सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पे कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे. कुछ पैगामात आपके मेरे सामने मौजूद हैं, उनको मैं शामिल करना चाहूँगी और मेरे ख्याल से शामिल करने चाहिए. या एक अदद गाना लगाऊंगी, गाना लगा के उसके बाद वापस आऊँगी. आपके ढेर सारे जो पैगामात हैं ना उनको साथ में शामिल करूँगी. तब तक आपने क्या करना है, तब तक आपने मुझे मैसेजेस करने हैं, ठीक है? आपके ढेर सारे कमेंट्स हो जाएंगे ना तो फिर मैं एक दफ़ा ही उनको साथ में शामिल कर लूँगी.
لیں جی, یہ ایک سانگ ہے میری سامنے آیا اور میں نے کہا کہ اس کو ذرا لگاتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں بالم پہ میری, موت کا زور چلتا نہیں ہے.

वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो. और यहाँ पे मैंने अपने लाइव को स्टार्ट किया है और ये है जी इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आई हूँ. अगर कोई इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करना चाहे तो यू कैन ज्वाइन इट डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से. हम मेरा इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगी, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं. अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात करूँगी. दुआ का सेशन जो है वो जारी है. जिसने दुआएं करवानी है ना, वो अपना नाम जो है वो लिखवा दे और वो इंशाल्लाह पूरी इज्तमाई दुआ एंड में मैं करवा के जाऊँगी. आज तक ही मुझे कॉल आई कहती हैं कि दुआ करवा दे मेरे लिए. मैंने कहा आज मैंने कहीं पे लिख तो नहीं दिया था कि आज मैं दुआया सेशन करूँगी. अच्छा जी, बात मैं कर रही हूँ कि दो लोगों के दरमियान आने वाला तीसरा फ़र्द जो होता है, इसमें गलती किसकी होती है? पहले फ़र्द की होती है, दूसरे की होती है, या फिर वो जो आ जाता है खुद ब खुद उसकी गलती होती है? ये आपने मुझे बताना है. आपके बहुत सारे पैगाम मेरे सामने मौजूद हैं. हिना फ़रुख ने मुझे ज्वाइन किया है इंस्टाग्राम पे. हिना हेलो,

0: आपके ढेर सारे पैगामात मेरे सामने मौजूद हैं, अभी हमारे पास लगभग 2 से 3 मिनट हैं, तो मैं आपके कुछ पैगामात पढ़ती हूँ ताकि आप मज़ीद पैगामात भेजें ना। आप फिर कहते हैं कि भाई पहला पैगाम तो पढ़ा नहीं है, पहले मैसेज तो पढ़ा नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट क्यों करूँ। कंवल नाज ने सबसे पहले हमें मैसेजेस किए। कंवल थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। मिसेस फरकान ने हमें मैसेज किया जी, थैंक यू सो मच मिसेस फरकान, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रही हैं, दुआ देती हैं, प्रोग्राम को पसंद करती हैं, वेट करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उर्स लगारी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका मैसेज किया आपने। पंजाब यूनिवर्सिटी से कंवल नाज हमें सुन रही है, वेलकम जी आया नु कहती हैं, कहती हैं कैसी हो आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आज मेरे सर में बड़ी दर्द है सुबह से, कल सुबह से दर्द है और ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रही। वैसे आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि जिसमें आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज रहती है। अक्सर शमसी लिस्नर रेडियो क्लब की तरफ से माशाल्लाह बहुत सारे पोस्टर आपने भेजे कवल, थैंक यू सो मच। और इसके साथ हमें नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं जब तूफ़ान गुजर जाएगा तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा है, जब तूफ़ान गुजर जाता है तो किसे याद रहता है जी। कमल नाज कहती हैं कि नींद सुकून जब्त याददाश्त ने खो जाना है, उसने एक दिन किसी और का हो जाना है, और उससे बिछड़ कर दुआ करता हूँ कि नींद आ जाए। उसका क्या है, उसने तो वक्त पे सो जाना है, क्यों वजह उसको नहीं आपकी याद आएगी। फ़िरोज़ आलम हमारे साथ हैं जी, अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा, बहुत आप खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमें भी हाज़री नसीब फरमाए, इलाही आमीन। अच्छा जी, हमें ताबिंदा शाहीन ने ज्वाइन किया है मुझे इंस्टाग्राम पे, कहती हैं अस्सलामु अलैकुम, ढेरों दुआएं आप और सबके लिए जी। वालेकुम अस्सलाम ताबिंदा, कैसी हो आप। यहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो चुका, और न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम वापस आते हैं। यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम, और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फिर 101 के ऑफिशियल पेज पे, वहाँ पे कमेंट करके मेरे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
1: कमिंग अप नेक्स्ट 101 न्यूज़ हेडलाइंस।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं ने बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में मुश्तरका ऐलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं। नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ बिश्केक में मुलाकात में इलाकाई अमन व सलामती के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का पांचवा यौम शहादत मना रहे हैं। और खवातीन क्रिकेट T20 एशिया कप में पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान मैच आज दुबई में खेला जाएगा।
1: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 हॉल लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक। और सवाल आज का क्या था? सवाल मैंने बड़ा ही मसूमाना सा सवाल किया कि दो लोगों में आने वाला तीसरा इंसान जो होता है उसमें गुंजाइश कौन पैदा करता है? तीसरे फर्द की गलती होती है, दूसरे की होती है या पहले की होती है? मौका कौन देता है? अक्सर मर्द हजाज होते हैं ना, वो पतली गली से निकल जाते हैं कि जी गलती मेरी तो थी नहीं। जब वो एंड में पकड़े जाते हैं ना, जब मतलब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, तब वो कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तो इस खातून की है। या वो सामने वाले फर्द पे डाल देते हैं या फिर वो अपनी बंदी पे डाल देते हैं। मेरी बंदी नहीं, सारा कसूर है। आज कल एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो देखने को मिलती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें होती है जिनको सामने ले आया जाता है। जी सोशल मीडिया ये कह रहा था, आप 30 सेकंड की रील से, 30 सेकंड की बातों से खस नहीं कर सकते ना किसी की ज़िंदगी। मोहम्मद नईम पहले ने हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। फिर 101 के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी, उस पर कॉमेंट करेंगे, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। आरजे वसीम साहब को सलाम दे दिया मोहम्मद नईम टेलर, आपने पहुंच गया, आपका सलाम जी। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करते रहा करो, उससे दूसरों का भला तो होगा साथ आपका भी होगा। अच्छा जी, यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से आप जब सर्च करेंगे ना, आपको मैं सामने लाइव पे नजर आ जाऊंगी। ज़ुबिया आजकल तो ये चल रहा है, तू है हर जाय तो अपना भी यही तोड़ सही, तू नहीं तो और सही, जिंदगी तो नहीं है ना ये, फिर जिंदगी तो नहीं है ना ये, फिर ये तो बस है वही है, चलता जा रहा है तो। अच्छा जी, इफ्तखार अहमद हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू? योर प्रोग्राम इज वेरी गुड, यू हैव अ वेरी गुड स्टाइल, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, मे अल्लाह ऑलवेज गिव यू एवरी हैप्पीनेस, एवरी सक्सेस। इफ्तखार अहमद सिटी बहावल नगर, लिसनिंग टू यू फ्रॉम विलेज सनाटका। ओके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सही दुआओं को आ गए लड़के तुम। सज्जाद अली लाडला हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात टू द शो, सत बिस्मिल्लाह जी आयानो सलाम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगी और आपको सुन के अच्छा लगा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, तमाम सुनती समातों को सलाम भेज रहे हैं आप, आपको शुक्रिया जी, आपके लिए और सब सुनने वालों के लिए के नाम ये दुआ है, आपकी दुआ का बहुत शुक्रिया सज्जाद। 04221100101, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं फरीश बोझलो और से बात कर रही हूँ
0: जी।
1: डॉक्टर हो के आपके सर में दर्द हो रही है, आप चाय पी ले ठीक हो जाएंगे।
0: पी है जी मैंने।
1: जी है, चलिए ठीक है, दो बिस्किट भी खा ले ऐसे।
0: ओके हो गया। तो
1: ये टॉपिक है ना, दो की आपस में अगर लड़ाई हो ना, तो तीसरा आ जाए, जिसको कहते हैं लुच तलने वाला।
0: ठीक है,
1: ये जो लुच तलने वाले हैं खुद ही आ जाते हैं, ताकि हमारा नाम हो जाए। हाँ। उनसे प्रेस करना चाहिए, फिर लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन लोगों को जरा कितना पीछे रहना चाहिए,
0: मौका नहीं देना चाहिए,
1: किसी को सामना नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए यही एक छोटा सा शेर है, मस्त रहो अपनी मस्ती में, ना जाओ गैरों की बस्ती में। तो आज अंजुम के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको सुखा दे, जल्दी जल्दी सुखा हो जाए, मेरे गुड्डू जल्दी जल्दी सही हो जाओ, आइसक्रीम खाए, मसाले वाली चीजें बंद कर दे। आपके लिए बहुत सारी लिस्नर कॉलर सब परेशान है, आप सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। खान की वालदा बीमार है, उनके लिए भी दुआ है। आफिया खान के भाई बीमार है, उनके लिए भी दुआ। बाकी सब जो हॉस्पिटल में दाखिल है उनके सब के लिए दुआ है। आगे दोस्त के लिए बहुत सारी दुआ है, पूरी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी दुआ, आपके लिए और सबके लिए बहुत सारी दुआ। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह
0: फी अमान अल्लाह जी। बिल्कुल, आरजे ज़िया की तबीयत भी थोड़ी नासाज है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और उन तमाम बीमारों को शिफा दे जो बीमार हैं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की कीमत उस वक्त मालूम होती है जिस वक्त आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे, आप प्रॉपरली जिस तरह से एक सिस्टम चल रहा होता है एक नॉर्मल इंसान का, आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली चल नहीं पा रहे, तो आपको फिर ज़िंदगी की कीमत का अंदाज़ा होता है कि सबसे कीमती चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, सेहत है। लाइफ पे हमें ज्वाइन किया जी सादिया सैयदा, सैयद अली खान ने, बहुत शुक्रिया आपका। मैम आपसे पूछ रही हूँ जी, दो लोगों के दरमियान तीसरा शख्स जो आ जाता है, कोई तीसरा फर्द आ गया, तो उसमें जिम्मेदार कौन होगा? और जब ऐसा हो जाता है तो फिर कुछ लोग ना मैनिपुलेट कर जाते हैं चीज़ों को, बहुत तेज़ होते हैं अपनी गलती नहीं निकालते, वो सामने वाले पे डाल देते हैं, भाई तुमने ये बात की और तुमने ये हरकत की तो इस वजह से जो है वो किसी और को मौका मिला। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या आप फिर खामोशी से साइड पे हो जाएं? ख्वातीन की बात इस वजह से करती हूँ कि ख्वातीन शायद इस चीज़ को ज़्यादा फेस करती हैं, जो बेगमात होती हैं, जो बंदियाँ होती हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा फेस कर रही होती हैं। कमलनाज पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। 8 जे ज़ियान जुम को अल्लाह अच्छी से दे, इलाही आमीन। अमरजा चौधरी साहब आ गए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी आपका। सज्जाद अली कह रहे हैं आमीन सुम आमीन, अल्लाह पाक हमारे प्यारे ज़ियान अंजुम भाई को सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, इलाही आमीन। अमरजा चौधरी साहब ने बहुत सारे मैसेजेस किए, माशाल्लाह सदा सलामत रहो, बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला खैर। कहते हैं नंबर वन शो, अच्छा जी। एक दुआ की रिक्वेस्ट है हमारे रेडियो की बड़ी अच्छी लिसनर फ़ायज़ा नसीर, जो बीमार हैं उन सब की रिक्वेस्ट है कि इनकी सेहत के लिए दुआ करें। आमीन इलाही आमीन, और उन तमाम बीमारों के लिए बहुत सारी दुआएं जो बीमार हैं। और नो डाउट ये जो मौसम है, इस मौसम में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करें। एक कॉल सुनते हैं और फिर एक सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: जी बिस्मिल्लाह पे, वालेकुम सलाम
0: जी। कौन हमारे साथ काम?
2: अब्दुल हमीद रुकाबात
0: जी।
2: ते सब तो पहले जिन्ने भी आए ना कॉलर दवा वास्ते, सारे वास्ते बहुत सारी दवावां अल्लाह पाक सब सेहत दे,
0: इलाही आमीन। ते
2: बाकी टॉपिक ते अभी गल करूंगा, दो आदमियां ते जां दो भैणा ते कोई गल चलदी होवे ना मामला कोई, ते तीसरा जिहड़ा आवे ना विच उहनूं बुला सहारे की लोड़ होंगी भी साडा फैसला करे,
0: ठीक है।
2: तीसरे नु चाहिए वा के कोई मुआवजा करे, फैसला अच्छा कर दे, जेडे पहले दो भैणा वा जन भाई आ उन्होंने भी चाहिए दर गुजर कर लेनी,
0: ठीक है।
2: जो फैसला कई आंदे तीसरे ते तीसरा पै के काम खराब कर देंदे, कहंदे ना तीसरा रलिया ते झुग्गा गलिया,
0: बिल्कुल
2: इंज नहीं होना चाहिए,
0: ठीक
2: है। बहुत सारिया दवा किसी दवा वास्ते, बहुत सारिया दवा रब रखा
0: अल्लाह।

0: सुन रहे हैं FM 101।
1: जी वेलकम बैक, दिस इज FM 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबैर शफीक। 12:25 मेरा आपका साथ रहा करता है जी हर मंगल की सुबह 11 से 1। क्या बात कर रही थी विस्मा, कह रही थी कि वालिदा से जो है ना वो लड़ाई झगड़ा। वो समझते नहीं है ये जब कल आपको अम्मी, कल को आप अम्मी बनोगी ना तब आपको अंदाजा होगा विस्मा। एक्चुअली इस चीज़ पे मैं हमेशा जो बात करती हूँ ये करती हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर। जब आप तहजीब के दायरे में रहकर चीज़ें करते हैं तब चीज़ें और तरह से होती हैं। और जब आपको लग रहा है, आपको समझ आ रही है कि यार ये सामने जो मेरी मदर हैं या मेरे फादर हैं वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वहाँ थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, ना कि आप बदतमीज़ी स्टार्ट कर दें। लड़ाई झगड़ा ये होता है ना कि आप आगे से जो है वो तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हो, तो आप जवाब नहीं दो, आप खामोशी इख्तियार कर लो। शायद थोड़ी देर बाद उनको, कुछ वक्त के बाद उनको जो रियलाइज़ हो जाए कि जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हो वो उस तरह से है, बिकॉज उनका तजुर्बा आपसे ज़्यादा है ना। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप अगर 50 के भी हो जाओ तो आपके वालिदैन का तजुर्बा आपसे 20-25 साल ज़्यादा ही होगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी और अच्छा रिलेशन चलाने के लिए, ठीक है बिस्मा। मोहम्मद नज़ीर, हम मुजम्मल नज़ीर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजम्मल नज़ीर हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुजम्मल नज़ीर हैं हमारे साथ बीबी पाक दामन से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया जी। हदीका क्यानी का गाना लगा दें, बूहे बारियाँ। ओके मैं लगा देती हूँ जी हदीका क्यानी। अपना सही, आपने सही कहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपको वो हाँ वो वाले राज खोल देते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते, सोचे नहीं होते, होते ही नहीं है राज वो जो आप बोल दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: जी वालेकुम सलाम, खुश आमदीद, सब कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं रजा साहब?
2: बड़ी देर करती है मेरे वहाँ आते आते, मेरे से बस बस हो गई, इतना अच्छा टॉपिक था, मैं कह मेरी कल मिल जाए, अल्लाह करे
1: मिल गई जी।
2: हाँ जी, मेरी तरफ से भी सब सुनने वाले को, जो मुझसे पहले मेरे सीनियर आ गए हैं उन्हें अपनी अपनी राय दे दी है, तो मेरी राय यही है कि अगर ऐसा बन जाए कभी कभार, मैं अपनी जिंदगी की मिसाल दूंगा, मेरी किसी से नाराजगी हो जाए या कोई इख्तलाफ वाला जो झगड़ा चलता हो फैमिली मैटर पे आ जाता सब कुछ, तो पहले कोशिश ये होती है कि बंदे के अंदर ना लचक और बर्दाश्त होना चाहिए सुनने की, तो हम सुनते नहीं है, सिंपल मसला खड़ा होता ही तब है जब हम सुनते नहीं है। फिर तो मैं कोशिश करता हूँ जिनसे मेरा कोई इख्तलाफ है या नहीं है, हम बैठ के दोनों जो फरीक हैं, दोनों जो हैं मसले को हल करते हैं। तो अगर अगर नाम समझने लगे फिर तीसरा वो बंदा लेते हैं जो न्यूट्रल होता है, पहले उनको जो न्यूट्रल बंदा आए ना, तीसरा आए आपकी जिंदगी में, पहले वो उनको आपकी जो नौयत है ना, जो आपका मसला है, जो आपकी नाराजगी है वो पता होना चाहिए, फिर फैसला करें जो भी करें, फैसला वो करें कि दोनों घरों को देख कर, यानी कि जो भी आरजी रजा चोरी एक लिसनर है ऐसे नहीं, दोनों की कफियत देखे, दोनों का जो रिलेशन है वो देखे, पहले वो रिश्ता देखे ना, मेरा उससे रिश्ता क्या है उस बंदे के साथ।
1: बिल्कुल ऐसे,
2: अगर ये
1: बहुत शुक्रिया रजा साहब, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, बहुत शुक्रिया आपका।
2: मेरी तरफ से फायदा सिर्फ बीमार है, उनके लिए सेहत सलामती की दुआ करें।
1: बहुत शुक्रिया।
3: रीजनल एनर्जी प्रोजेक्ट एक्सलेंसीज, वी मस्ट डिवोट आवर एनर्जीज टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SEO development strategy until 2035. The establishment of the SEO Development Bank will be a critical step in this regard. As the permanent chair of the special working group of the SEO on poverty reduction, Pakistan will continue to strengthen social protection and promote inclusive and sustainable development across the SEO region. Excellencies, as Pakistan assumes the chairmanship of the SEO, we are proposing an action plan that shall prioritize key sectors including IT and AI, energy development and poverty reduction, disaster management, health, culture and sports. in IT and AI, we propose to establish an SCO sovereign AI infrastructure and governance framework to promote responsible and inclusive AI development and also ensure that no member state is left behind. Excellencies, Pakistan's SCO chairmanship shall be pursued under the theme Turning Vision into Action, Connectivity, Innovation and Shared Prosperity. We undertake this responsibility with humility, hope and abiding faith that connectivity will bring our peoples closer, innovation will open new doors of opportunity and shared prosperity will reach every home. Together, let us turn this vision of the SCO into action, its promise into progress, and its progress into a better future for all of us. As an old wisdom says, many streams together make a mighty river. So too, when our nations bring together their strengths, aspirations, and destinies, there is no limit to how far we can go. Let us therefore, my very dear excellencies, brothers and friends, move forward together with the resolve that in a time of uncertainty, history will record the SCO as having chosen cooperation over confrontation, dialogue over diversion and division, bridges over barriers, and hope over fear. Let history record that the SCO did not merely witness a changing world, we shaped it together. I thank you all.

0: वेलकम बैक, दिस इज़ एफ एम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक। सलमान थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। एम रज़ा चौधरी साहब थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। और क्या बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी दो लोगों के दरमियान तीसरा आने वाला शख्स जो है वो उसमें गलती किसकी हुई, गुंजाइश कौन पैदा करता है, और अगर गुंजाइश आ जाती है तो क्या ज़रूरी है शामिल हो जाया जाए, दो लोगों की हंसती वस्ती जिंदगी को तबाह कर दिया जाए। देखिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें, तकलीफ दे अमल तो है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अब आगे ना बहुत सारी चीज़ें कोल के बयान कर दी गई हैं, जी ऐसे नहीं होता, ये इस पॉइंट से तो ये इस पॉइंट से। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है तकलीफ तो है ना जहाँ पे आप किसी तीसरे इंसान को मर्ज कर रहे हो। अब एक्चुअली वो क्या कहते हैं कि छुपाया इस वजह से था कि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन अगर तकलीफ का अंदाज़ा हो या एहसास हो तो फिर तो लाया ही ना जाए ना किसी को। और आप क्या कह लो कि बेवफाई या बेईमानी उस टाइम पे ही हो गई जिस टाइम आपने सोच लिया इस शख्स से, और दूसरा इंसान कहाँ था, वो तो था ही नहीं जब कोई तीसरा आ गया। क्या ख्याल है आपका? आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, जाएंगे पोस्ट अपडेट हो चुकी है, इस पे कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमारे से शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एफएम 101 के, आप हमें कॉल कर सकते हैं 04211100101 पे। यूँ तो मेरे खलूस की कीमत भी कम ना थी, कुछ लोग कम शनास थे, दौलत पे मर गए। ऐसा भी होता है जिंदगी में ना, दौलत बहुत बड़ा सरमाया है, और इसके बगैर मुझे, मैं कल अभी ये चीज़ सोच रही थी, मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ कहीं, और वो सफ़र थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मैंने जो कैब करवाई वो लेट हो गई, दो कैब करवाई और दोनों ही लेट हो गई, और मैंने मुझे उसको कैंसिल करके लोकल रूट पे जाना पड़ा। तो जब मैं लोकल पे जा रही थी तो मैं देख रही थी, मैंने कहा यार ज़िंदगी में हम बहुत सारी उलझने फेस करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी का क्राइटेरिया और उसके सोचने समझने की सलाहियत और उसकी ज़िंदगी के अपने मसले मसाइल है ना। जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, और वो गरीब है ना तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, धूप में काम कर रहा है। और मैं रास्ते में गुजरते हुए मैंने देखा कुछ जो लोग थे वो काम कर रहे थे, एक शख्स खड़ा था वो ड्यूटी दे रहा था, और उसने ये अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी हाथ में और वो खड़ा था उधर, इतनी शदीद गर्मी धूप। मैंने कहा हमारे जो घर में मौजूद मर्द हजरात होते हैं यार कितना सख्त काम करते हैं, वो आपके अब्बा की सूरत में हो, वो भाई की सूरत में हो, वो आपके हस्बैंड की सूरत में हो, यार वो कितना सख्त काम करते हैं हमारे लिए। और सख्त काम इन द सेंस ऑफ कि आप देखिए आसान तो नहीं है, ये किस कदर तकलीफ़ और ये देबात होती है, चीज़ें होती हैं, मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। और अगर वो सारा दिन काम करके आता है, चाहे वो ऑफिस में है चाहे वो कहीं बाहर, हाँ काम की नौइयत होती है उसकी, जो परेशानियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर वो सारा दिन उस प्रोसेस के बाद घर में आता है, घर में आके उसे सुकून भी नहीं मिल रहा, तो फिर किसका कसूर है? एक दूसरा वर्जन भी तो देखे ना, फिर किसका कसूर है? अगर वो इंसान, मेरे पास पेशेंट आए कोई 4-5 दिन पहले, एक पेशेंट था तो वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में था, बेसिकली वो यूके से इधर वापस आया था, तो उसने अपने बड़े मसले मसाइल बताए, और उन मसले मसाइलों को सुन के ना अब अगली कहानी जो दूसरे फरीक की कहानी है वो तो वो दूसरा फरीक ही बता सकता है, लेकिन पॉइंट ये था कि जब मैंने सुना तो मैं ये सोच रही थी कि भाई तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता लेकिन दूसरा फरीक तो अपनी कहानी वही सुना सकता है। 04211100101। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। कौन
1: जोबिया? फोन उठा दो, 10-15 साल मिली आप उठा ही नहीं रही
0: जी। कौन
1: हमारे साथ? रिजवाना बोल रही हूँ, बढ़िया से बात
0: जी उठा लिया, क्या कहिएगा रिजवाना जी?
1: वो मैंने आपकी पोस्ट नहीं देखी है, माशाल्लाह मुझे बड़ी पसंद आई, अक्सर आपकी देखती रहती हूँ, मुझे वैसे नहीं सुनना आता ना फेसबुक पे, वैसे पोस्ट आ जाती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो दुपट्टा लेती है ना बड़ी, मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है।
0: अच्छा,
1: मेरा दुपट्टा कभी उतरा ही नहीं था तो बहुत प्यारी लगती है।
0: बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। क्या कहेंगी, दो लोगों के दरमियान तीसरा फर्ज जो आता है, गलती किसकी होती है, गुंजाइश कौन देता है?
1: दोनों भी कम नहीं होते
0: ठीक है।
1: और वो बता रही थी क्या बिस्मा कह रही थी कि मर्दों पे इतबार नहीं है, ठीक है बाकी मर्दों पे इतबार नहीं, मेरे साथ भी हुआ
0: लेकिन इतबार तो करना पड़ता है ना।
1: नहीं नहीं आजकल की औरतें भी आजकल की लड़कियों पे इतबार है, आजकल की लड़कियां तो हमें बीच के खाओ,
0: मामला दोनों तरफ से खराब है बिल्कुल।
1: आजकल ज्यादा नहीं, मर्द आजकल मसूम है, पहले जमाने में थे इसके।
0: अच्छा जी,
1: आजकल के लड़के बेचारे
0: ना कहो
1: नहीं है, मगर ये सोशल मीडिया ना लड़के ज्यादा ठीक हो गए।
0: अच्छा ठीक है सही,
1: तो पंजाबी बोल लो वो पहले जमाने में थे इसके।
0: अच्छा
1: आजकल के लड़के बेचारे
0: ना कहो
1: नहीं है, मगर ये सोशल मीडिया ना लड़के ज्यादा ठीक हो गए।
0: अच्छा ठीक है।

ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ। ये जो सॉन्ग थे ना, इस एरा के जो सॉन्ग हैं वो आपको कहीं और ही ले जाते हैं, क्या ख्याल है आपका? जो लोग सुनते थे, जो लोग इस एरा से बिलोंग करते हैं, उनको अंदाज़ा है कि इन सॉन्ग्स की ना, इन गानों की एक अपनी ही कशिश है जो आपको खींच के वहाँ पे दोबारा ले जाती है। हमारे साथ काफ़ी टाइम से कॉलर हैं, 04211100101। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हैं जी कहीं और ही चले गए मेरे ख्याल से वो कॉल मिलाकर। एनीवेज जी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 04211100101। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, दो लोगों के दरमियान, दो फ्रीकेन के दरमियान जब तीसरा कोई शख्स आता है तो उसमें जिम्मेदार कौन होता है, गुंजाइश कौन देता है, क्या गलती जिसकी होती है वो आप होते हैं या वो शख्स होता है जो आ जाता है, ये आपने मुझे बताना है। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट हो चुकी है, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट मेरे सामने और मैं इसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। कंवल नाज ने भेजा और मुझे लगता है कमेंट ऑफ द डे यही होगा, बिकॉज बहुत अच्छे अल्फाज में जो है, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा है जिसमें उन्होंने अपनी बात, अपना मौकफ सामने रखा है। वो कहती हैं कि आज के मौजू पे ये कहूँगी, एक सेहतमंद रिश्ता दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखता है, बहुत सी आज़ादी दोनों तरफ है और दोनों ही एक दूसरे से घुटन महसूस नहीं कर रहे। इस माहौल में रिश्ते परवान चढ़ते हैं, अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। अगर वो शख्स आपकी ज़िंदगी में होना है तो दुनिया के तमाम खुले दरवाजे और खिड़कियाँ उन्हें छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे, सच पर भरोसा रखें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज जो आपने कवल दिया, अनडाउटेडली बहुत अच्छी बात। कि एक बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि ये इंसान टॉक्सिक है, हम उसके अंदर इतनी ज़्यादा घुटन कर देते हैं कि कोई सामने वाला बंदा हमसे बात भी नहीं कर सकता। और जहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग होती है ना, सबसे पहली चीज़ होती है वहाँ पे वो ये आती है कि आप बात नहीं करते हो, आप एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पाते हो। और जब आप डिस्कस नहीं कर पाते हो ना, तो बहुत सारे सवालात के जवाब भी आपके अंदर खुद ही बन जाते हैं। और जब वो जवाबात आप खुद ही देना शुरू कर देते हो तो फिर क्या होता है, फिर आप कहते हो कि भई ये रिश्ता ख़राब हो गया या इसमें कोई तीसरा मौजूद है। अक्सर ख़वातीन की हम इसलिए ज़्यादा इसमें बात करते हैं कि ख़वातीन इसमें ज़्यादा वो जो है ना, वो पिसती हैं, बिकॉज उन वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती हैं, वो किसी भी रिश्ते में ओवर सेंसिटिव होकर चलती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में जो है ना, वो हाई एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, वो उनको ज़्यादा कभी कभी नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको उस तरह से ही देखनी चाहिए जिस तरह से वो होती हैं। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हैं ना, तो उस टाइम पे भी वो गलत नज़र आना शुरू हो जाती है, मेरा तो यही ख्याल है। आपका क्या ख्याल है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ एक और बात मैंने जो शुरू में की उस पर भी गौर ज़रूर कीजिएगा, ख़वातीन को बार बार मैं डिस्कस इस वजह से करती हूँ कि ख़वातीन इसमें जो है ना, वो ज़्यादा इंक्लूड होती हैं। चार ख़वातीन बैठी हुई हैं, उन्होंने जो बात करनी है ना, वो किसी पांचवी की होगी जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि मर्द हज़रात में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई नया काम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन क्या डिस्कस कर रही होती है, फ़लाँ के कपड़े, फ़लाँ का जूता, फ़लाँ की चूड़ियाँ, ये सारे मामला डिस्कस हो रहे होते हैं और फिर उसके बाद नक्स भी निकाले जा रहे होते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक गाना मैं लगाती हूँ और इस गाने के बाद वापस आती हूँ। 04211100101 हमारा डायलिंग नंबर है, इस पर कॉल करें और कॉल करके हमारे से शामिल हों। मैं आपसे पूछ रही हूँ, दो लोगों के दरमियान जब कोई तीसरा आता है तो गुंजाइश कौन छोड़ता है, किस इंसान की गलती होती है, और क्या जब तीसरा आता है तो दूसरा इंसान वहाँ पर मौजूद होता है या वो कहीं पहले के जा चुका होता है, आपने मुझे बताना। पल पल जीना मोहाल, ये सुने और फिर वापस आते हैं।

0: हमारे साथ ही कॉलर मौजूद है 0422111001. अस्सलाम वालेकुम जी.
1: वालेकुम सलाम जी.
0: जी
1: डॉक्टर साहब, अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, आपका प्रोग्राम सुन रहा था.
0: अब्दुल वहीद कैसे हैं आप आफ्टर लॉन्ग टाइम?
1: जी डॉक्टर साहब बस ऐसे ही, टाइम का थोड़ा डिफरेंस होता है.
0: हाँ.
1: और ये जॉब का टाइम होता है, अभी बस मैंने फ्री हुआ तो गाड़ी में लगाया हुआ था, तो मैंने कहा.
0: कैसा मौसम है ऑस्ट्रेलिया का वैसे?
1: अच्छा, ये यहाँ तो सिटी टू सिटी वेरी करता है. मेलबर्न सिडनी का बहुत ही ठंड है आजकल, इवन कहीं पे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं 6 है, कहीं 8 है. तो अच्छा, मैं जिस सिटी में हूँ वहाँ थोड़ा ज्यादा 20-25 के करीब है. जी जी
0: ओके. अच्छा अब्दुल वहीद, आज हम बात कर रहे हैं दो लोगों के दरमियान तीसरा शख्स जो आता है उसमें गलती किसकी होती है.
1: मैंने मैंने प्रोग्राम जी जी सुना है, लेकिन बात आप तो बहुत आगे लेके जा रही हैं. मैं तो अभी वहीं पे हूँ कि अंडरस्टैंडिंग और गुजारा, और वो किसी ने कहा था कि ताने गुजारिया गुजारे कम सवारिया. तो मैं तो अभी उसी पे कहूंगा कि अभी तो साथ चलना है समुंदर की मसाफत में.
0: हाँ.
1: किनारे पर ही देखेंगे कि किनारा कौन करता
0: है. ओए होए, ठीक है, मतलब पहले नहीं, इतने ज्यादा वहम में नहीं आ जाना चाहिए.
1: हाँ देखें, अभी अभी तो बात की जा सकती है ना.
0: हाँ.
1: जो कंसर्न है या शिकवेश कहते हैं उनको दूर किया जा सकता है.
0: ठीक है,
1: तो वैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है, तीसरे की जरूरत ही नहीं रहेगी.
0: अच्छा जी, चलिए बहुत शुक्रिया. और कुछ कहेंगे?
1: बस यही था. अच्छा, इसी तरह प्रोग्राम करते रहे, बहुत अच्छे आपके सोशल इश्यूज के प्रोग्राम होते हैं, जो आपके टॉपिक होते हैं डेली बेसिस पे. ये एक लिहाज से आप भी अपना जो माशरती बुराइयां उनको दूर करने के लिए और माशरे की बेहतरी के लिए आप और रेडियो पाकिस्तान जो काम कर रहा है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इसी तरह जारी रहेगा.
0: जज़ाकअल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अब्दुल वहीद हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से थे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की आपने. वहम नहीं पालने चाहिए, बाल दफा वहम जो होते हैं ना वो बहुत सारे मामलात खराब कर देते हैं, यू नो.

सुनते रहिए FM 101 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल के इजलास के मौके पर चीन, रूस, तुर्की और ईरान के सदर सदूर से मुलाकातें की। कंट्रोल लाइन के दोनों जानब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का 5वां यौम शहादत मना रहे हैं। और खवातीन क्रिकेट T20 एशिया कप में पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान मैच आज दुबई में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल अक्वामी कानून के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है और अक्वामे मुत्तहिदा और शंघाई तआवुन तंजीम के मंशूर पर पूरी तरह कारबंद है। उन्होंने आज किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान ने उस वक्त भरपूर अंदाज में अमन की हिमायत की जब रवां साल के आगाज में शंघाई तआवुन तंजीम के एक रुकन मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई जिससे खत्ते में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस बहरान के बाइस तवानाई की अहम तरसीली गुजरगाहें बंद होने से आलमी मईशत मुतासर हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशें खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की सूरत में कामयाब हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का पुख्ता यकीन है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त खत्ते में देरपा अमन के क्याम के लिए सबसे काबिल अमल और पायदार रास्ता फराहम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की
1: कमिंग अप
2: दिस इज FM 101
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहाने मुमलिकत की काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहाने मुमलिकत की काउंसिल के इजलास के मौके पर चीन, रूस, तुर्की और ईरान के सदूर से मुलाकातें की। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। सिंध काबीना ने सूबे भर में कच्चे के इलाके की ज़मीन के जामे सर्वे और नक्शा साजी की मंजूरी दी है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का 5वां यौम शहादत मना रहे हैं। खवातीन क्रिकेट T20 एशिया कप में पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान मैच आज दुबई में खेला जाएगा।
1: हाय, दिस इज FM 101. Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: 101 FM।
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: मूसलाधार बारिश और شدید ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.1.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
7: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Panorama!
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101. Thank you.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

0: चलिए जितते हवन सारे अन्ने। चल बोले उथे चलिए जिते होवन सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। सभी सुनने वालों को, सभी चाहने वालों को रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से आपके मेज़बान फरहान खान की जानिब से आदाब सलाम तस्लीमात एंड हैव अ ब्यूटीफुल नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी सुनने वाले, हमारे ना सुनने वाले खैरियत से होंगे। अगर आप रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के संग संग हैं तो शब के इस पहर में आपका हमारा साथ होता है एक बहुत ही एक्सक्लूसिव से प्रोग्राम के साथ, एक बहुत ही ख़ास से प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है ये तो बहुत ही ख़ास है, हमारे आज के जो मेहमान हैं ये उससे ज़्यादा ख़ास हैं, क्योंकि आज इट्स अ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन आज का हमारा शो। और हमारे मेहमान जो है ना, शी इज़ सच अमेजिंग पर्सनैलिटी और बहुत सी ख़वातीन के लिए ये इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। और बहुत सी ख़वातीन जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीवमेंट हासिल करना चाहती हैं, ख़ास तौर पे कुछ करना चाहती हैं और उनको लगता है कि चैलेंजेस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, उन चैलेंजेस से कैसे नबल आजमा होना है। आज की हमारी जो मेहमान है ना, वो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है। इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव इसलिए है कि बहुत से ऐसे सवाल हम इनसे करेंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे, हम रोड पे जाते हुए, गाड़ी पे जाते हुए, ट्रैफिक में जब होते हैं और इसके अलावा जब हमारे बहुत सी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत सा निज़ाम हम देखते हैं, तो उस हवाले से इनकी जो मैनेजमेंट है, जो ये काम करती हैं, वो बड़ा ही ख़ास है। बिल्कुल जनाब, आज हमारे साथ हमारे आज के इस शो में सच इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पर्सनैलिटी फहमीदा ज़ीशान हमारे साथ हैं। आप इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर एंड इंचार्ज एंटी बैगर स्क्वाड हैं और पुलिस लाहौर से आपका ताल्लुक है। मैडम, वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच।
0: कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड।
0: वेलकम टू रेडियो पाकिस्तान, आपको खुश आमदीद कहते हैं रेडियो पाकिस्तान में। और आज आपका मेरे ख्याल में रेडियो पाकिस्तान में पहला विजिट है?
1: जी बिल्कुल, आज मेरा पहला विजिट है।
0: यहाँ से गुजरती होंगी, देखती होंगी रेडियो पाकिस्तान यहाँ पे है ना?
1: जी बिल्कुल, डेली हम हमारा तो पूरी लाहौर में चूँकि चल रहा होता है एजुकेशन का भी और बैगर्स का भी, तो हम यहाँ से गुजरते देखते हैं और सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम यहीं पे आके एक प्रोग्राम करेंगे।
0: कभी रेडियो के बारे में सुना आपने अपनी जिंदगी में? कभी सुनते रहे आप?
1: जी जी बिल्कुल, हम रेडियो सुनते भी थे और हमारा अपना सिटी ट्रैफिक पुलिस का भी एफएम रेडियो है,
0: बिल्कुल है।
1: तो उस लिहाज से हम उसको भी वक्तन फोक्तन जो है वो क्योंकि वो भी 24/7 है तो एफएम 100 सुनते हैं, एफएम 101 सुनते हैं हम। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
0: जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस का, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, पुलिस जो है और ख़ासतौर पर ख़वातीन को जब हम देखते हैं तो बड़ी एक मोटिवेशन मिलती है, अच्छा यार ख़वातीन भी इस शोबे के अंदर हैं। कब से आप, कितना टाइम हो गया काम करते हुए?
1: सर मुझे 20 इयर्स हो गए हैं। 2006 में हम लोग आए थे और 2006 में और 2026 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो हम बूढ़े हो गए, अगले वक्त की तैयारियां हमारी स्टार्ट हो गई हैं। माशाल्लाह से 20 साल हमने सर्व किया सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के लिए,
0: पता चलता है।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन आपकी ये बात क्या, बूढ़े हो गए मैं नहीं मानूंगा। देखने में आप बिल्कुल बूढ़ी नहीं, माशाल्लाह यू लुक सो यंग, वेरी फ्रेश।
1: थैंक यू सो मच।
0: जॉब आपकी बड़ी हैटिक है, नो डाउट, बड़ा इसमें चैलेंज होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। हाउ डू यू मैनेज दैट एज ए लेडी, आप पुलिस की नौकरी को कैसे मैनेज करती हैं?
1: सर 2006 में जब हम आए थे तब हम ज़्यादा एनर्जेटिक थे, हम यंग थे, हमारे में एक एडवेंचर का जो चार्म था वो था। तो उस लिहाज से फिर हमारा एक्सपीरियंस इस तरह से अच्छा रहा। स्टार्टिंग में आते ही उन्होंने हमें फील्ड में लगा दिया एज अ पेट्रोलिंग ऑफिसर। हमने 250 पे बाइक स्क्वाड चलाए, एज अ फील्ड ऑफिसर हमने चलानिंग की। मैं 1.5 साल तक माल रोड पर ड्यूटी करती रही, अपने मैंने मैनुअल सिग्नल्स चलाए, मैंने चलान किए, अनलिमिटेड चलान किए। और ये जो एक मिथ बनी हुई है कि फीमेल अगर पुलिस ऑफिसर हो तो लोग कहते हैं कि जी हमारा भी चलान कर दें, ऐसा नहीं। आप यकीन जाने कि चलानिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होते थे, लेकिन ये ज़रूर था कि जैसे वो मेल्स के साथ रिजिस्ट करते हैं वैसे ही बिल्कुल रिजिस्टेंस हमारे साथ नहीं होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फील्ड में भी किया काम, हमने ऑफिसेज में भी काम किया और हमारा बड़ा अच्छा और प्लेजेंट जो है एक्सपीरियंस रहा।
0: हर जगह थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा काम किया और एक्सपीरियंस लिया कि कैसे होता है। अच्छा, फील्ड का जो काम होता है ये थोड़ा सा टफ होता है, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि लोग जो है ना खवातीन को देखे, जाहिर बात है एहतराम का एलिमेंट भी होता है, बहस का एलिमेंट जो होता है वो मर्दों के साथ ज़्यादा होता है, ट्रैफिक वार्डन्स के साथ ज़्यादा होता है। तो कभी ऐसे हुआ सच में किसी ने कहा कि चले मैडम आप चलान कर रही हैं तो कर दें, कोई बात
1: नहीं? मैंने आपको बताया ना बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे। तो जब हम एज अ पेट्रोलिंग ऑफिसर ड्यूटी कर रहे तो बहुत सारे लोग आते होते थे, वो ये कहते थे कि मैडम हमने कोई वायलेशन की है, हमारा चलान भी आप कर दें।
0: अच्छा,
1: तो मतलब हम बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, फिर हम मेल और फीमेल नहीं होते हैं, उस टाइम में हम पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो हमें भी वो इतनी वर्थ हम में होती है कि हम उनको टैकल कर लें। चूँकि 2006 में हम स्टार्टिंग में आए थे तो तब कॉम्प्लिकेशंस इसलिए ज़्यादा थी कि तब रेजिस्टेंस लोगों की ज़्यादा होती थी, लोग हमें जाते हुए कुछ लोग थम्स अप करके जाते थे, कुछ विक्ट्री का और कुछ ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा जी बिल्कुल मिला जुला वो सिम्बल्स हमें दे जाते थे, लेकिन हम लोग बीइंग अ पुलिस ऑफिसर उनके साथ जो है ना वो उनको रिस्पॉन्स। और सबसे मजे की बात ये देखें कि अगर हमारे साथ कोई हैंकी बैंकी करता भी था तो हमारे पास अथॉरिटी थी कलम वाली, तो इस लिहाज से फिर हमें पता था कि हम अथोराइज्ड हैं, तो उनको भी ये पता था कि पुलिस ऑफिसर हैं तो कानूनी कार्रवाई हो जानी है।
0: कुछ ऐसे भी मनचले होते होंगे ना जिनको आइडिया नहीं होगा कि ये पुलिस ऑफिसर के पास इतनी खवातीन के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आपको बैरिक के अंदर जेल के अंदर भी बंद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, हमने बहुत सारे बाइक राइडर्स को बंद किया, एफआईआर दी उन पे, ना सिर्फ चलानिंग हमने एफआईआर भी दी हुई है।
0: अच्छा, आप बिल्कुल एफआईआर भी दे सकती हैं?
1: जी बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते
0: हैं। से एफआईआर भी हो सकती है लेकिन वो ड्यूटी के दौरान।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे।
0: और जाहिर बात है आप ड्यूटी जब कर रहे होते हैं सब चीजें मैनेज करनी होती हैं और उसको लेके चलना होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से जो भी आपके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको लेके चलना था। अच्छा, ये जो चलान है ये सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए होता है कि या फिर शहरियों की एक तरबियत भी होती है इसलिए किया जाता है?
1: नहीं सर, मैं आपको बताऊँ, हम जब 2006 में हमारा स्टार्ट हुआ था तो डे वन से हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी हमारे CDO साहब की तरफ से कि आप एक एजुकेशन यूनिट को लेके चलें जिसका मकसद अवेयरनेस देना है,
0: ठीक है।
1: और हम इस मोटो पे काम कर रहे थे, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, तो वो 20 साल से हमारा चल रहा है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता जितना इन्फोर्समेंट का आता है,
0: ठीक है।
1: हम डायरेक्टली इन्फोर्समेंट करते ही नहीं, हमारी पहले 1 week 2 weeks की कंपेन होती है जिसमें हम लोगों को ब्रीफ करते हैं, लेकिन जब आप खुद देख लें कि पहले आपको कभी शाजो नादर आते थे नज़र हेलमेट, बाइक राइडर्स हेलमेट नहीं लेते थे, जबकि हेलमेट चलान से बचने के लिए नहीं है, हेलमेट तो उनकी सेफ्टी है। जब हमने इन्फोर्समेंट स्टार्ट की, जब हमारी ई चलानिंग स्टार्ट हुई, कैमरा ने चलान पे चलान भेजने शुरू कर दिए, तो आप देखें 98% लोग जो है हेलमेट पहनना शुरू हो गए
0: और हेड इंजरीज खत्म हो गए जी लोगों की।
1: बिल्कुल, हमने सर वक्तन फक्तन हमने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से रिपोर्ट्स ली, डॉक्टर्स का ये खुद कहना है कि बहुत हद तक जो हेड इंजरी है वो वहाँ लोगों की बचत हो रही है, लोग सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि सर हमारी पूरी बॉडी का दारोमदार इसी सर पे है और ये जितना सेंसिटिव है वो आप आपके सामने कि अगर हमारे पास ब्रेन ना हो तो हम वर्किंग हम तो बिल्कुल
0: नहीं कर सकते। CTO साहब से पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया कि 85% हेड इंजरीज जो है ना उसमें फ़र्क पड़ा है।
1: जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है, मैं आपको बता रही हूँ कि डॉक्टर्स खुद हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें बल्कि स्पेशली बुला के, चूँकि हम एजुकेशन से रेलिवेंट हैं तो जब हमारा कोई सेमिनार होता है तो वो ज़रूर इस चीज़ को मैंशन करते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हेड इंजरीज को डिक्रीज़ कर दिया है।
0: अच्छा, लोगों का जब चलान होता है और डेफिनेटली आपने कई 100 चलान किए होंगे, ऐसा भी होता है कभी ग्रज में गुस्से में किसी चीज़ पे गुस्सा आ गए, ऐसे गुस्सा आ गए ना कि यार ये बंदा बहस कर रहा है इसका तो चलान ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा भी मौका आता है कभी?
1: हमारा नहीं सर, हम जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना वहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ पेशेंस सिखाई थी, तो अगर वो पब्लिक एग्रेसिव हो जाती है, अंडरस्टूड है उसने एग्रेसिव होना है, सर सबसे बड़ी बात ये कि किसी को रोक लेना ही जो है वो बहुत बड़ी गलती होती है, वो सबसे पहले दुश्मनी ट्रैफिक पुलिस की यही हो जाती है कि जी मुझे रोका क्यों है, तो उस लिहाज से हम कभी भी पर्सनल नहीं होते हैं। हम वो अगर बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं तो हम सिर्फ इतना कहते हैं सर प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स दे दें, आप लाइसेंस चेक करवा दें। तो वो बात करते करते ऐसा टाइम आता है कि वो खुद खुश होकर जाते हुए कह के जाता है थैंक यू सो वेरी मच।
0: अच्छा, ये ज़्यादातर आप लोगों के साथ होता होगा?
1: नहीं, हमारे मेल्स की भी सर ट्रेनिंग ऐसी ही हुई है और मेजोरिटी ऑफ मेल्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं कि लोग जाते हुए ये कहते हैं कि भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, नेक्स्ट मैं वायलेशन नहीं करूंगा।
0: अच्छा, ये फिर लड़ाई फिर क्यों हो जाती है? अक्सर देखा गया है वीडियोस में कि लड़ाई हो रही है और मतलब हाथ उठाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर।
1: जी सर, वो बहुत रेयर सिचुएशन होती है, लेकिन आप देखें कि जो हमारे पाकिस्तान की वेदर कंडीशन हैं उसके अकॉर्डिंगली हर बंदा जो है ना वो शॉर्ट टेम्पर है।
0: बिल्कुल है,
1: और पब्लिक ने तो होना ही होना है, उसमें अगर हम भी शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे तो फिर बात खराब होती है। और जब तक कोई पब्लिक में से अपनी लिमिट्स को ज़्यादा क्रॉस नहीं करता, हमारे ट्रैफिक ऑफिसर अपने जो जब्त है उसको कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन चूंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, आखिर इंसान है, उनमें से भी कोई
0: बिल्कुल
1: अपना टेम्पर लूज कर जाता है, तो फिर उस सिलसिले में होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं, बहुत रेयर होता है।
0: अच्छा, इसमें हमारे सुनने वाले जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको बिल्कुल ये बताते चलें कि लड़ाई करना मकसद नहीं होता। अगर पुलिस आपको रोकती है तो डेफिनेटली आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आपकी जो कंडीशन होती है गाड़ी की, जो प्लेट अगर गलत लगी है उसके बारे में पूछा जाता है, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें ना शॉर्ट टेम्पर होने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से मोहब्बत से बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चलान होगा?
1: सर नहीं, हम सबके चलान भी तो नहीं करते। आप देखें, आप किसी भी सिग्नल पे अगर खड़े हो कि आप ट्रैफिक ऑब्जर्व करें ना, आप एक घंटा ऑब्जर्व करें तो थाउजेंड्स में वायलेशन होती हैं, जबकि हमारे ट्रैफिक जो पुलिस ऑफिसर हैं फील्ड ड्यूटी वाले वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 चलान करते हैं, 8 घंटे में सिर्फ 10 चलान, जबकि वायलेशंस तो थाउजेंड्स में होती हैं। तो अंडरस्टूड है कि वो ओब्लाइज भी करते हैं।
0: अच्छा मैडम, आप लोगों पर टारगेट नहीं होते? मैंने सुना है कि टारगेट्स होते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे 20 ऐलान करने हैं, 25 करने हैं, तो उसके लिए फिर बस
1: सर ये ना ये एक मिथ है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम 20 साल से अभी हम मैंने आपको बताया ना एजुकेशन का, हम किसी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में हम कहें ना ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है, तो उनका क्या काम, वो आगे से जवाब देते हैं चलान करना। फिर जब हम उन्हें बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के क्या क्या काम है, तो वो जो एक सोच होती है, ये जो टारगेट वाला ना, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, सर देखें आप किसी भी सिनेरियो में चले जाएं, आप अपनी ड्यूटी को देख लें, आपकी ड्यूटी लाइक 8 घंटे है, आपके मैनेजमेंट ने 8 घंटे के बाद आप आएंगे बैठ के चले जाएंगे, 8 घंटे का जवाब तो देना है ना आपने। हम 8 घंटे अपनी परफॉर्मेंस में अगर 10 चलान करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो वो अगर टारगेट वाली बात हो तो फिर आप देखें कि यहाँ पर कितने चलान हो जाए।
0: और वैसे भी लाहौर में हजारों की तादाद में बाइक्स हैं, बल्कि लाखों में,
1: लाखों में सर, लाखों में। और मैं आपको बताती चलूं कि जो एक्सीडेंट होते हैं, मोर देन 67% जो बाइक राइडर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक्सीडेंट में।
0: अच्छा,
1: जो व्हीकल्स हैं सबसे ज्यादा व्हीकल मोटरसाइकिल है जो कि एक्सीडेंट का कॉज बनती है।
0: अच्छा
1: जी,
0: वो जारी बात है, तादाद ज्यादा है
1: जी
0: रोड पे ज्यादा
1: सर, तादाद भी ज्यादा और वायलेशन ज्यादा। आप देखें सिग्नल, वो जो येलो लाइट है ना, येलो लाइट, आप लोगों से पूछें येलो लाइट का क्या मतलब है, उनमें से बहुत सारों को पता ही नहीं होगा कि येलो लाइट का क्या मतलब है। वो ये समझते हैं कि जब लाइट येलो होती है तो हमने स्पीड को अप कर देना है, जबकि रेडी टू मूव और रेडी टू स्टार्ट दो मतलब हैं, ग्रीन से येलो होनी और येलो से रेड होनी। तो लेकिन उनका मकसद एक ही होता है, वो एक तो स्पीडली निकलते हैं, दूसरा जब देखते हैं थोड़ी ट्रैफिक कंजेशन है वो जिगजैगिंग करते हुए आते हैं, तीसरा उनको ये बताया कि तमाम स्लो मूवर्स और मोटर बाइक की हमेशा लेफ्ट लेन होती है। आपने कभी देखा लेफ्ट लेन में बाइक को?
0: नहीं,
1: कभी भी नहीं होती, या मिड वाली में चल रही होती या बिल्कुल फास्ट लेन में चल रही होती।
0: मैंने देख के ये कह रहा हूँ अभी, तुम कितना लेफ्ट पे होते हो, राइट पे
1: होते। बिल्कुल
0: राइट, नॉर्मली एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये मैडम जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता ना, हमारी चूंकि तरबियत नहीं है ड्राइविंग की, मोटर बाइक की, गाड़ी की, लेन की, लाइन की, कि हमने किधर रहना है, किस लाइन में रहना है, किस लाइन में नहीं रहना, अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमें किस लाइन में रह के चलानी है। एक्चुअली वो बेहंगम तरीके से गाड़ी भी चला रहे हो तो और मोटर बाइक भी चला रहे हो, तो ये ओवरऑल सबका एक इशू है। और बल्कि हमें यही नहीं पता कि हमारे पास स्पीड लिमिट क्या है, हम अक्सर चला रहे होते हैं ना तो गाड़ी सपोज हाईवेज के ऊपर है, मैंने एक मोटरवे रिंग रोड पे देखा है, अगर 100 की स्पीड है, 110 की स्पीड है तो उसके ऊपर 50-60 की स्पीड पे चला रहे होते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: विच इज रॉन्ग। और बल्कि इसके ऊपर तो पिछले तो मैं आया था, मैंने उनसे कंफर्म किया कि जी इस पे भी फाइन होता है।
1: हाँ जी, ऐसे देखें, अब अगर आप कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता होता लेन का कौन सी लेन है, उसका बेहतरीन तरीका है कि हर रोड की जुबान होती है, और वो जुबान क्या है? सिग्नल्स और साइन बोर्ड्स. आप आवाम देखती नहीं, पब्लिक मैटर ही नहीं करती कि कोई वो हमारा रोड साइन लगा हुआ है, जबकि हमने जगह जगह पर स्पीड लिमिट लगाई हुई है, हमने उधर इंफॉर्मेटरी जो साइन बोर्ड्स हैं वो लगाए हुए हैं, इवन के हमारे जो मैंडेटरी हैं वो लगाए हुए हैं, जो बिफोर टाइम आपको बता देते हैं कि अगर आपने यहाँ ये वायलेशन की तो इन्फोर्समेंट होगी. फिर दूसरा ये हम एहतियाती जो इशारे हैं वो लगाए होते हैं कि आगे कोई हर्डल आ रही है तो आपकी सेफ्टी के लिए आप इन रूल्स को फॉलो करें. वो कोई देखता ही नहीं है, इग्नोर करती है आवाम, जिसकी वजह से फिर ये एक्सीडेंट होते हैं.
0: एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि अगर मैं गाड़ी पे बैठा हूँ, एक कॉल ले लें आपकी इजाज़त हो तो.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, सॉरी. अच्छा ये बताइए कि जब नॉर्मली अगर सिग्नल रेड है और येलो होता है और गाड़ी क्रॉस चल जाती है, ऑफिशियली आपको चलानी चाहिए गाड़ी, अगर दोबारा से येलो होता है और अगर आप सेंटर में कहीं फंस जाते हैं, इन दैट केस आप सिग्नल तोड़ देते हैं, सिग्नल का वो वॉयलेशन में आ जाता है.
1: सर अगर आपकी गाड़ी का टायर स्टॉप लाइन से आगे है, स्टॉप लाइन वो लाइन होती है वाइट कलर की जो जिब्रा क्रॉसिंग के एंड पे लगी होती है,
0: सॉलिड लाइन,
1: आप उसको क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आप गुजर जाएंगे, आपको उस पर चलान ई चलान नहीं आएगा. लेकिन अगर आप स्टॉप लाइन से पीछे हैं और आपका येलो हो गया है तो ये आप पे फर्ज है कि आप वहाँ पर स्टॉप कर जाएं.
0: ठीक है,
1: वो आपकी सेफ्टी भी है, दूसरों की सेफ्टी भी है, और आपको चलान से सेफ भी करेगी, क्योंकि जो ई चलान है वो ये नहीं देखते कि ये इंस्पेक्टर की गाड़ी है, ये डीएसपी की गाड़ी है, या किसी एंकर की गाड़ी है, उसने चलान कर देना जो भी वायलेशन करेगा. तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सिग्नल पे अगर आप खड़े हैं देन भी येलो पे आपने स्टार्ट करना है, और अगर आप आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इशारा बंद है तो अपनी स्पीड को जरूर स्लो डाउन करें.
0: ठीक है,
1: जबकि हम स्लो डाउन नहीं करते, हम स्पीडली चले जाते हैं, वो क्योंकि जो एक्सीडेंट होता है ना वो सेकंड्स में नहीं होता सर, नैनो सेकंड में एक्सीडेंट होता है, और वो जो नैनो सेकंड का एक्सीडेंट होता है ना वो बाज़ुकात इतना स्वेयर एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि मोस्टली जो वायलेशंस होती 20-40 ईयर्स है ना, इस एज के लोग ज़्यादा वायलेशन करते हैं.
0: अच्छा।
1: और इस एज में मोस्टली वो लोग होते हैं जो की पर्सन होते हैं अपने घर का, तो वो एक शख्स की डेथ नहीं होती, वो पूरी फैमिली की डेथ होती है. तो हम सिटी ट्रैफिक पुलिस ना तो रेवेन्यू इकट्ठा करती ना टारगेट पूरा करती, सिटी ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ ये काम है कि लोगों की ज़िंदगियों को सेव करना. हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं. आप देखें कोई भी इवेंट आता है, हमारी ट्रैफिक एडवाइजरी आ जाती है, कोई इशू आता है हम इन टाइम जो है हर चीज़ की सर्विस वो दे देते हैं. प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को ये बताते हैं कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आप खुद महफूज हैं बल्कि आप दूसरों को भी महफूज करते हैं. और जहाँ पर हम लेक्चर के लिए जाते हैं हम सबसे पहले एक चीज़ कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी देखिए मेरी वजह से वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, फरहान साहब की वजह से एक्सीडेंट हो गया. तो फिर हम ये कहते हैं कि आप जब रोड पे आते हैं तो आप अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि एवरीबॉडी मूविंग ऑन अ रोड इज अ ब्लाइंड, ऑल रोड यूजर आर ब्लाइंड, सिर्फ आप ही हैं जो देख सकते हैं. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे बचा
0: और आपने कैसे सेफ्टी करनी.
1: जी बिल्कुल, अगर आप अपने माइंड में ये बिठा लें कि ऑल द रोड यूजर्स आर ब्लाइंड तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा. दूसरी चीज पेशेंस, आप हर जगह पे पेशेंस, जबकि हम जब रोड पे आते हैं हम कहते हैं रोड तो मेरी है, सबसे ज्यादा हक भी मेरा है. तो आप ठीक है हक लेना चाहिए लेकिन दूसरों का हक छीनना नहीं चाहिए, तो आप देना सीखें.
0: और दूसरी बात यह है कि आप ट्रैफिक, आप रोड के ऊपर आए हैं, आपको अखाड़े में तो नहीं है ना, जंग लड़ने के लिए तो नहीं आए ना, कि आपने ही रोड करना है. एंड दिस इज यू आर राइट, नैनो सेकंड की बात होती है. अच्छा ये बताइए कि आप, जाहिर बात है आप इंस्टीट्यूशंस में भी जाते हैं, लोगों को ब्रीफ भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ट्रैफिक के कवानीन के भी बताते हैं, डू यू थिंक कि हमें बाकायदा मज़मून एक हमारे सिलेबस में होना चाहिए, तरबियती को हिस्सा होना चाहिए स्कूल्स के अंदर, के बच्चों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में, ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया जाए?
1: जी बिल्कुल सर, हमने इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की थी, हमने इसका सिलेबस रेडी भी किया था.
0: अच्छा।
1: सेक्रेटरी एजुकेशन ने अप्रूव भी किया था और ग्रेड 1 से ग्रेड 10 के लिए एक एक टॉपिक ऐड कर दिए, जो कि इनफ नहीं है. हमारा ये विजन है कि पूरी एक बुक होनी चाहिए जो प्ले ग्रुप से स्टार्ट हो, ताकि बच्चों को बेसिक, क्योंकि बच्चों को छोड़ के बड़ों को भी नहीं पता कि हाउ टू यूज़ द रोड, हाउ टू वॉक अलोंग द रोड, और वो उनको पता ही नहीं होता है हमने कहाँ पे चलना है और किस साइड पे चलना है और कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमने लेने हैं. तो हम ये समझते हैं कि इसको सिलेबस का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए. CTO साहब की बहुत काविशें हैं, वो इस पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने तैयार भी कर लिया सिलेबस. बस इंशाल्लाह वेरी सून वो मीटिंग करेंगे सेक्रेटरी एजुकेशन से और इसको सिलेबस का हिस्सा जरूर बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। ये हमारा मोटो है कि हम इसको फुलफिल करेंगे,
0: अल्लाह आपको कामयाब करें। और एजुकेशन बड़ी मैटर करती है जी, बाहर के मुल्कों का कंपैरिजन करें। मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने दुबई में लाइसेंस लिया और जो उन्होंने हाल किया ना, जिस तरह उन्होंने सिखाया और जिस तरह उन्होंने दो दफ़ा फेल किया, मुझे पता है कि मैंने कभी सोचूंगा भी नहीं कि मैं वायलेशन करूँ वहाँ।
1: सर मैं तो कहती हूँ हर जगह पर कि जितना इजीएस्ट हमारा टेस्ट है पाकिस्तान का, वो ना होने के बराबर है।
0: कुछ भी नहीं,
1: आप अब्रॉड में चले जाएं, आपके लिए इतना मुश्किल है कि आप उससे बेहतर है सीएसएस कर लें।
0: बिल्कुल ऐसे ही
1: इतना मुश्किल है। और हमारा सबसे इजीएस्ट है 7 हमने बनाया, उसमें आपने करना, उसके बावजूद लोग कहते हैं मैं 35 साल से चला रहा हूँ तो मुझे विदाउट लर्नर आप जो है वो पास कर दें। तो लर्नर चूँकि हमारे ट्रैफिक के जो जो ड्राइविंग रूल्स हैं उसमें ये मैंडेटरी है कि आपने लर्नर के 42 डेज़ के बाद यू आर एलिजिबल फॉर रोड टेस्ट। तो जब वो रोड टेस्ट देते हैं सर, वो फेल हो जाते हैं। और अच्छा, वो 35 साल से गाड़ी चला रहे हैं, 15 साल से, 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, सबसे इजीएस्ट जो हमारा रोड टेस्ट है उसमें फेल हो जाते हैं लोग। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो सिर्फ ड्राइविंग जानते हैं, उनको रोड सेंस नहीं होती। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि हाँ, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के तकरीबन 12 जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो अभी रनिंग कंडीशन में हैं। सीटीओ साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और उसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव है आबशार ड्राइविंग स्कूल का, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट है हमारा। वो हमारे तमाम जो स्टाफ वहाँ मौजूद है वो फीमेल स्टाफ है, और हर वो फीमेल जो किसी भी बात में हेजिटेशन फील करती है वो फ्रेंडली वहाँ पर आए, और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा आबशार को। और सबसे जो हमने बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है वो ये दी है फीमेल के लिए कि मॉर्निंग 8 o'clock से लेके नाइट 8 o'clock तक, 8 AM to 8 PM तक उसकी टाइमिंग है।
0: कितनी देर की क्लास है
1: सर? ये 21 डेज का कोर्स है और उसकी 10,000 फीस है।
0: अच्छा।
1: उसमें हर फीमेल के लिए ये फैसिलिटी है कि जो टाइम स्लॉट उसको सूट करेगी वो उस टाइम स्लॉट में आके अपनी ड्राइविंग सीख सकते हैं।
0: मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में से कोई भी सीख सकते हैं
1: सर? नहीं, ऑटो नहीं, सिर्फ मैनुअल। उसमें हमारा सिमुलेटर मौजूद है, हमारा पूरा प्लान है जिसमें हम फर्स्ट 3 days जो है लेक्चर्स के थ्रू उनको रोड सेंस बताते हैं, उनको रोड साइंस और ट्रैफिक साइंस के बारे में बताते हैं। फिर उनकी इंडोर जो है वो फर्स्ट गियर में और रिवर्स गियर में, ये दो प्रैक्टिस होती है। सेकेंड वीक में फिर वो आउटर चले जाते हैं, अपनी सारी करवाते हैं। जो थर्ड वीक है उसमें फिर दोबारा से वो जो ट्रैक हमने बनाया 7 वाला, उसमें उनकी सारी की सारी प्रैक्टिस होती। इवन सबसे मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है फीमेल्स के लिए, अगर फीमेल कोई ड्राइविंग करती है और टायर पंक्चर हो जाता है तो बेचारी घंटों खड़ी होती है, और हमारे माशाल्लाह से जो पब्लिक है उनका रिस्पांस ये होता है कि बस खड़े होके देखा और चले गए। फिर वो खुद को मतलब के पैनिक कर लेती है कि मैं क्या करूं। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस के तमाम ड्राइविंग स्कूल में ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम टायर चेंज करना अच्छा। हर फीमेल को बताते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी ड्राइविंग को जो है सेफली लेके जाए। तो उसमें आपको रोड सेंस आ गई, आपको साइंस के बारे में पता चल गया, आपको गाड़ी के मैकेनिक्स भी बताते हैं, मजे की बात।
0: हाँ जी,
1: वो खुद पानी चेक करेगी, बैटरी का पानी खुद चेक करेगी, वो ये देखेगी रेडिएटर का कि रेडिएटर में पानी मौजूद है, वो सारी गेजेस का उसको पता होगा, टर्मिनल कैसे अगर छोटा मोटा कोई इशू आ जाता है तो वो खुद रिसॉल्व करेगी उसको। मतलब हम सिर्फ ड्राइवर नहीं बनाते, मैकेनिक भी बना देते हैं।
0: रोड के ऊपर भी लेके आते हैं आप बाहर?
1: जी जी सर, सेकंड वीक में रोड पे ही प्रैक्टिस होती है।
0: अच्छा,
1: हमारी सेफ्टी इस तरह से भी है कि हमारी जितनी भी वो लर्निंग व्हीकल्स हैं वो सर ड्यूल सिस्टम है। खुदा ना खास्ता अगर कोई इशू आता है जो इंस्ट्रक्टर साथ बैठी होती हैं वो उसको कवर कर लेते हैं।
0: अच्छा, लाहौर में कितने सेंटर हैं टोटल?
1: सर 12 सेंटर हैं
0: लाहौर में, पूरे में 12 ड्राइविंग सेंटर है। और आप सुनने वाले हमारे जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं लाहौर भर में, आप इमेजिन करें कि 12 सेंटर हैं, सुबह 8 से रात 8 बजे तक की टाइमिंग है। और मेरे लिए सबसे हैरान कुन बात है जो आपने फीस बताई है जो कि ना होने के बराबर है, सिर्फ 10,000।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: 10,000 रुपये में आप 3 weeks का प्रोग्राम है जी?
1: जी जी, 3 weeks।
0: 3 weeks में आप ड्राइविंग सीखते हैं, और जिस मैडम बता रही हैं कि जितने प्रोटोकॉल्स जो कुछ सिखाया जाता है, घर का आपका मियाँ साहब भी नहीं वो सिखा सकते इतनी चीज़ें। वो
1: बिल्कुल, और सबसे मज़े की बात यह है कि हमारा स्टाफ सारा फीमेल है, तो फीमेल कंफर्टेबल फील करती है कि मुझे सिखाने में। और इसके अलावा हमारा वाओ का प्रोजेक्ट है, वीमेन ऑन व्हील।
0: ठीक है
1: सर, उसमें जितनी भी फीमेल्स हैं उनको बाइक और स्कूटी दोनों की ट्रेनिंग दी जाती फ्री ऑफ कॉस्ट।
0: ठीक है,
1: सिर्फ आईडी कार्ड लेके आएँ, उनकी एज 18 साल हो, यही रिक्वायरमेंट है। और डे फर्स्ट पे उनका लर्नर बनेगा, जब उसका लर्नर मेच्योर होगा आफ्टर 42 डेज वहीं पे टेस्ट होगा, वहीं पे उसको लाइसेंस मिल जाएगा।
0: अच्छा, और स्कूटी आप लोगों की होती है कि वो भी
1: अपनी? जी, स्कूटी बाइक हमारी, व्हीकल हमारी होती है। उन्होंने सिर्फ आना होता है, इंस्ट्रक्टर, व्हीकल, हर चीज़ हमारी होती है। सिर्फ स्टूडेंट ने वहाँ पर आना होता है, बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ट्रैफिक पुलिस बेयर करती
0: है। दैट्स वेरी ग्रेट। अब मैं देख रहा हूँ कि रोड पर बहुत ज़्यादा स्कूटी पर खवातीन भी अब चलाना शुरू हो गई हैं।
1: जी बिल्कुल सर, हमने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा फीमेल्स को ट्रेंड किया है।
0: अच्छा।
1: मोटर बाइक के लिए, स्कूटीज़ के लिए। और ये हमारा जो प्रोग्राम है कॉलेजेस में भी चला है, पंजाब कॉलेज में चला, यूएमटी में, यूनिवर्सिटी में हम गए हैं, यूसीपी में हम गए हैं, हमने लम्स में जाके ट्रेनिंग दी है, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में हमने जाके ट्रेनिंग दी, गैरीजन में यूनिवर्सिटी में जाके। जी फ्री ऑफ कॉस्ट।
0: अच्छा, स्कूटी के लिए कोई चार्जेस नहीं है?
1: सर, जो स्कूटी के लिए वाओ का प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हमारे जो ड्राइविंग स्कूल हैं, आबशार हो गया, जैसे लिबर्टी हो गया, इन दोनों जगह पर मोटर बाइक और स्कूटी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ 3,000 फीस है,
0: विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल।
1: जी बिल्कुल, जो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ का बता रही हूँ ना, वो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाया।
0: इसमें बच्चे आ रहे हैं, इसमें आपके इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं?
1: सर बहुत ज़्यादा, आपको मैं बताती चलूँ कि हमारे आबशार पे तकरीबन मार्च 2027 तक की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है।
0: वेरी नाइस,
1: इतने ज्यादा स्टूडेंट।
0: अच्छा, मैं बताऊं, मेरी सजेशन है, आप सीटीओ साहब को दीजिएगा, मेरी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट, मैं भी दूंगा आपकी बातों से, कि मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है ना, नए ड्राइवर्स के लिए नहीं, जो भी लाइसेंस लेने आए उन सब के लिए ये कंपलसरी कर दें कि आपने ट्रेनिंग लाजमी लेनी है ट्रेनिंग सेंटर।
1: सर हमने प्रपोजल बनाया।
0: अच्छा,
1: हमने ये प्रपोजल बनाया कि हर वो शख्स जो लाइसेंस लेना चाहता है वो एक दफ़ा हमारे ट्रेनिंग सेशन से निकल के आए, हम सर्टिफिकेट दें तो फिर वो एलिजिबल हो के वो टेस्ट दे के तो लाइसेंस।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
1: ये सबकी सेफ्टी है इसमें, और वैसे भी इतना ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लेकिन आपको पता है पब्लिक तो इस बात पे भी बहुत ज्यादा चिढ़ती है कि उन्हें ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं घर टेस्ट ले ले और हमें लाइसेंस दे दे।
0: वो कहते हैं किसी दिन ऑटोमेटिकली सब कुछ
1: जी
0: हो
1: बिल्कुल जाए। नहीं, अब तो ऑनलाइन देखिए ना फैसिलिटी, आप अपना लर्नर रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल रिन्यूअल, ये तमाम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्रेश लाइसेंस के लिए आपको हमारे सेंटर को विजिट करना पड़ेगा।
0: देखिए, इतनी फैसिलिटीज आप लोगों को मिल रही है, और ये फैसिलिटी पंजाब भर में है।
1: जी बिल्कुल,
0: पंजाब भर में, सिर्फ लाहौर के लेनी है। अच्छा मैडम, मैंने जैसे बताया कि मैंने दुबई में जब लाइसेंस लिया ना ड्राइविंग का, आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे आज तक वो याद है, 2013-14 की बात है
1: जी।
0: और आज तक नहीं भूल रहा वो एक एक लम्हा, एक एक दिन, कि मैं दो दफ़ा फेल हुआ। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा ड्राइवर था, मैं कई सालों से गाड़ी चलाते हुए, मैं कहा जी मैं तो फ़ौरन पास हो जाऊँगा, तो ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। तो आप इमेजिन करें कि दैट वॉज मतलब वो आज भी मुझे रूल्स याद हैं, शोल्डर कैसे चेक करना है, राइट लेफ्ट मिरर कैसे सुनना है, लोगों को कैसे ओवरटेक करना है, राउंड बोर्ड में कैसे दाखिल होना है, कैसे वो सारी चीज़ें करनी, विच इज मतलब। ये सारी चीज़ें जो थी ना मेरे लिए बड़ी एक डिफरेंट थी, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबको मतलब सबको ये तालीम लाजमी देनी
1: आनी चाहिए।
0: अच्छा मैडम, ये बताइए कि एक प्रोजेक्ट आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, कि जेमिनल जो पर्मेंट है उसके बारे में बताएं, व्हाट इज़ दैट बेसिकली?
1: जी बिल्कुल सर, सीएम पंजाब की इंस्ट्रक्शंस पे ये जीवनाइल जो पर्मेंट है ये स्टार्ट किया गया, कि जो भी बच्चे अंडर 18 है, क्योंकि पाकिस्तान ड्राइविंग रूल्स के अकॉर्डिंगली कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है वो एलिजिबल नहीं है लर्नर के लिए भी। तो आपने देखा कि 12 साल के बाद ही 12 साल के बच्चे यहाँ बाइक्स लेके जा रहे होते हैं, तो वो बड़ा मतलब पेरेंट्स का इसमें ज़्यादा हाथ है। हम तो वक्तन फ़क्तन इस चीज़ के लिए बताते हैं कि छोटी जो अंडर एज बच्चे हैं उनको ड्राइविंग के लिए ना बाइक्स दें, क्योंकि आपकी वो एक लम्हे की गलती सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाती है। तो उसके लिए फिर ये था कि चूंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो सीएम साहिबा ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि जी हम उनको 2 साल के लिए जुवेनाइल परमिट दे देंगे। उसमें सर ये है कि उसका बे फॉर्म या उसका स्मार्ट कार्ड बनाओ, पेरेंट्स में से मदर या फादर में से, जो दोनों में से जो भी आ जाए, एफिडेविट हम फिल करवाते हैं, और वहाँ पर बच्चे का बाकायदा तौर पर टेस्ट होता है, उसका साइन टेस्ट भी होता है, उसका रोड टेस्ट भी होता है। आफ्टर डैट हम उसको जुवेनाइल परमिट जो है वो दे देते हैं 1 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए।
0: मोटरबाइक का?
1: जी मोटरबाइक, जस्ट 1 to 5 तक। 1 टू 5 तक हैवी बाइक के लिए नहीं देते हैं। उसका मकसद ये है कि बच्चे खुद स्कूल चले जाएं, स्कूल से वापस आ जाएं, अपनी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो एकेडमी के लिए भी उनको जो कन्वेंस है वो प्रोवाइड की जाए। और इसमें ये है कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि अभी तक हमने तकरीबन 4000 प्लस जो है वो जीवेनाइल परमिट इशू कर दिया लाहौर में।
0: अच्छा
1: जी, बिल्कुल इस तरह ही है। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें नज़र आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सर मदर या फादर में से दोनों का एक आना लाजिम है और वो इस चीज़ के लिए एफिडेविट देता है कि मैं अपने बच्चे का जो है ना सारी की सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंगली जो है 1 to 5 से ज़्यादा हैवी बाइक हम चलाने की इजाज़त वैसे भी नहीं देते हैं।
0: ठीक है, और गाड़ी के हवाले से क्या है बच्चों के लिए?
1: सर गाड़ी के हवाले से है कि 18 साल से पहले कोई भी जो मेल या फीमेल को हम अलाउ नहीं करते कि वो लर्नर भी बनाए, गाड़ी के लिए नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी अभी बाइक के लिए, मोटर बाइक के लिए।
0: ठीक है, और लाइसेंस जो है अगर किसी ने लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस क्या है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए?
1: सर कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए। आईडी कार्ड आप लेके जाएं, अपना लर्नर परमिट बनाएं। जो लर्नर परमिट है वो आपका 6 मंथ तक वैलिड होता है।
0: ठीक है,
1: आफ्टर 42 डेज आप एलिजिबल हैं कोई भी ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। आप 42 दिन के बाद जाएं अपना टेस्ट दें और विदाउट एनी क्यू आप टेस्ट देंगे। आप जाएंगे, टोकन लेंगे, अपने टाइम पे साइन टेस्ट होगा आपका। साइन टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द रोड टेस्ट।
0: अच्छा।
1: तो रोड टेस्ट में आपने वही 7 वाला जो मैंने आपको बताया इजिएस्ट पाथ।
0: अच्छा।
1: वो मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में इतना इजी लाइसेंस नहीं है जितना नहीं। पाकिस्तान में exactly, हम देते हैं कि है। आप आए और लाइसेंस लीजिए। सर जो शख्स गाड़ी चला के आता है वो अपना लाइसेंस लेके जाता है।
0: अच्छा मुझे बताएं ये जो 7 वाली टेक्निक है ये क्या कोई टेक्निकल टेक्निक है कि बहुत आसान है, मुश्किल है, क्या है, लोग क्यों फेल हो जाते हैं?
1: सर उसमें ये होता है कि हमारी मेजरमेंट जो की होती है ना 7 की, वो जो कर्व है ना बेसिकली वहाँ पर वो ये है। वैसे तो रोड आप अगर देखें तो उसमें वो कुछ भी नहीं है, 0 के बराबर है जो टेस्ट हम करते हैं, लेकिन उनको इतनी सेंस नहीं होती कि वो जो कर्व है ना वहीं पे आते हुए वो ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं या थोड़े पैनिक हो जाते हैं या अंडर प्रेशर हो जाते हैं। वहाँ से जब वो बैक करते हैं ना बैक में आके सीधा कोन में लगा देते हैं और वो फेल हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: हालांकि वो इतना मुश्किल नहीं है। वो ड्राइवर जो अपने साइड व्यू मिरर का यूज़ करते हैं वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। सर एक छोटा सा ट्रिक है वो, अगर आप साइड व्यू मिरर का, वहाँ से जब वो बैक करते हैं ना बैक में आके सीधा कोन में लगा देते हैं और वो फेल हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: हालांकि वो इतना मुश्किल नहीं है। वो ड्राइवर जो अपने साइड व्यू मिरर का यूज़ करते हैं

0: पहनते हैं तो जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं. उसकी रीजन क्या है कि आपके साइड व्यू जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, वो साइड विजन आपका ब्लाइंड हो जाता है. तो उसके लिए जब आप मुड़ते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि आपको नजर नहीं आता. अगर आपके साइड व्यू मिरर है तो आप हेलमेट पहने और सेफली आप चले जाएं, साइड व्यू मिरर का यूज़ करें. हमने इतनी कंपेन्स की, आप यकीन जाने मोर देन 5000 हमने साइड व्यू मिरर और हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आवाम को एज अ गिफ्ट के वो आए आके लें और इसका यूज़ करें. वो क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस से वो साइड व्यू मिरर लगा लेते हैं, 5 मिनट आगे जाके जाके उतार देते हैं. मतलब वो सिर्फ इस चीज को समझते हैं कि हमने गिफ्ट ले लिया उसको, वो ये नहीं देखते कि इसका यूज क्या,
1: फायदा क्या है. आप ये बात कर रही हैं जी, नई बाइक ली जाती है
0: जी,
1: साइड मिरर लगे होते हैं,
0: लगे होते हैं,
1: घर आते हैं तो सबसे पहला काम है कि वो साइड मिरर उतार दे.
0: वो कहते हैं खूबसूरती खत्म हो जाती है
1: इसमें भी. मुझे लगता है चालान होने से आने वाले
0: जी सर हो रहे हैं.
1: अच्छा,
0: ये जी बिल्कुल, ये समरी प्लान कर दी गई है. नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला साइड व्यू मिरर के खिलाफ भी जो है ना वो इन्फोर्समेंट होगी.
1: लड़के बड़े गुस्से से मुझे देख रहे हैं.
0: नहीं,
1: आप,
0: नहीं, इनके
1: आप ये, नेने मचरे दे रहे
0: ये गुस्से से ना देखें, बल्कि मैं इनको बताऊं कि अभी कमिंग जो फ्राइडे है उसको हमारी कैंपेन है लिबर्टी में, इंशाल्लाह ताला हम साइड व्यू मिरर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
1: आप
0: आए हमसे गिफ्ट लेके चले जाएं और यूज करें वो.
1: ठीक है बच्चों, आप लोग जाएं और मैडम उधर होंगी, आपको फ्री में 2 साइड व्यू मिरर मिल जाएंगे. अच्छा मैडम ये बताइए कि ड्राइविंग के हवाले से, चूंकि आप मेरे पास बड़े सवाल होते हैं ड्राइविंग के हवाले से.
0: जी बिल्कुल हम हाजिर.
1: इन केस ड्राइविंग करते हुए गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है,
0: जी बिल्कुल,
1: तो एट दैट मोमेंट जो गाड़ियों वाले हैं उनको खुद से रिस्पॉन्स ना करने के बजाय क्या करना है, पुलिस को कॉल करनी है, किससे बात करनी है, क्या करें, आके फैसला कराएं या तस्वीर कराएं उनका.
0: अच्छा जी, ये जो चीज़ है ना कि गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जो इन केस ऑफ एक्सीडेंट सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रैफिक पुलिस होती है. हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले वहां मौजूद होते हैं, वो फौरी तौर पर आ जाते हैं.
1: ठीक है.
0: इन केस के वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो बजाय इसके कि आप सेंटर में गाड़ियाँ खड़ी करके पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक करें, आप अपनी गाड़ियाँ साइड पर लगाएँ, आपस में तस्फिया करें. अगर आपको एक दूसरे की समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज 15 पे कॉल करें, पुलिस आएगी और आपको पुलिस स्टेशन चले जाएंगे आप. फिर लोग क्या करते हैं, जो ही एक्सीडेंट होता है बजाय इसके कि अपनी गलती माने, जैसे मैंने अभी आपसे पहले बात की थी, गलती अपनी कोई नहीं मानता, वो कहता है कि दूसरे की गलती है. और सबसे जो उनकी चीज़ होती है वो ये होती है, प्रैक्टिस होती है, जिस सेंटर में गाड़ी खड़ी है आपस में लड़ रही होती है
1: और ट्रैफिक ब्लॉक
0: और ट्रैफिक पीछे बहुत लंबी लाइन लग जाती है, लोगों को समझ नहीं आती कि आगे क्या हो रहा होता है. जब पहुंचते हैं आधे पौने घंटे में वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है जी सेंटर में गाड़ियां खड़ी हैं और रीज़न क्या है कि हल्की सी गाड़ी टकराई है और आपस में वो लड़ाई कर रहे हैं. तो लड़ाई सोल्यूशन नहीं है, आप अपनी गाड़ी फौरी तौर पर साइड पर लगाएं और आपस में बात करें. अगर आपको समझ नहीं आती फौरी तौर पर आप 15 पे कॉल करें, और जब तक आपने 15 पे कॉल करनी है ट्रैफिक पुलिस वाला आपके पास पहले मौजूद हो जाए, क्योंकि हमारी ड्यूटी हर टाइम मौजूद होती है. और दूसरा किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में सेफ सिटी से हमें जो इंटीमेशन आ जाती है और हम फौरी तौर पे जो उनसे रेलेवेंट बीट ऑफिसर है उनको मैसेज कन्वे हो जाता है.
1: और अब तो 15 का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है. कल ही मुझे इत्तेफाक हुआ, कोई किसी का मसला था तो मैंने 15 पे कॉल किया, अब यकीन जाने फ़ौरन से आए, उन्होंने वो चीज़ें सॉर्ट आउट की. फिर उसके बाद मुझे कॉल आई कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर, मतलब 15 ने कैसा आपके साथ बिहेव किया.
0: सर बड़ा अपडेट हो गया और क्योंकि 15 हर बंदे को पता है, तो मैं यहाँ ये भी मेंशन करूँगी कि अभी सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुझे एज अ फोकल पर्सन जो है वो नॉमिनेट किया गया है वर्चुअल ब्लड बैंक के लिए.
1: माशाल्लाह.
0: हम ब्लड डोनर्स भी इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो 15 पे कॉल करें और 4 प्रेस करें, फौरी तौर पर आपको ब्लड जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आपको अरेंज कर दिया जाएगा.
1: क्योंकि
0: जी सर फ्रेश ब्लड वो ऐसा है कि हमारे पास चूंकि डोनर मौजूद है, हम जो नियरेस्ट डोनर होता है उसको कॉल करते हैं और जो हमें आप 15 पे कॉल करके बताएं जी हमें जनाह हॉस्पिटल में हूँ, मुझे ए पॉजिटिव चाहिए ब्लड ग्रुप, और हम विद इन नो टाइम हम अपने जितने डोनर लिस्ट हैं उनको कॉल करते हैं, उनका कनेक्ट कराते हैं. और ना सिर्फ कनेक्ट कराते हैं, जब तक वो डोनर अपने घर से जाके उन को ब्लड दे नहीं देता तब तक वो कोऑर्डिनेशन जो है उसमें वो अलाइन होते हैं हमारे साथ. जी बिल्कुल ऐसा ही है. उसमें सर ये है कि जिंदगियों को सेव करने के लिए आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं और उसमें खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ इमरजेंसी हो गई है और मुझे किसी ने ब्लड डोनेट किया है तो ये मेरा फ़र्ज बनता है, अखलाकी फ़र्ज भी बनता है कि मैं अपने आप को भी ब्लड डोनर के तौर पर वहाँ रजिस्टर्ड करवाऊँ, क्योंकि जो इमरजेंसी मेरे साथ हो सकती किसी के साथ भी हो सकती.

0: to Islamabad.
1: Crispies.

0: बिल्कुल
1: उसको
0: ठीक,
1: भी पे करना पड़े ताकि जो है ना वो नेक्स्ट टाइम सोचे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि ठीक है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, आप दर्द ज़रूर रखें अपने दिल में, लेकिन सिर्फ डिज़र्विंग लोगों के लिए रखें। ये वो भिखारी होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, ये नहीं डिज़र्व करते कि इनकी इस तरह मदद की जाए। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप उनके लिए कपड़े, खाना पीना, इस तरह की
0: अच्छा
1: चीज़ें रखें, पैसे ना दें।
0: ये सपोर्ट आप बताएं कि हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं, अगर किसी का बहुत दिल करता है कि यार ये सड़कों पे खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं, ये पता नहीं किसी मुसीबत मुश्किल में, उसका अल्टरनेट क्या है?
1: सर रखें, आप खाना रखें, आप पानी रखें, आप जूसेस रखें, चिप्स रखें, आप इवन के जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप कपड़े रख लें, बच्चों के कपड़े रखें, बड़ों के रखें, जहां आप देखते हैं कि ये जी डिजर्विंग है, इसके पास कपड़े अच्छे नहीं है, इसकी हालत अच्छी नहीं है, बल्कि उसको साथ ले जाएं सर, उसको साथ ले जाएं, उसको फ्रेश करें, जाके सलोन में लेके जाएं, उसको नहला धुला के उसको कपड़े पहनाएं, उसको बाइज्जत तरीके से खाना खिलाएं, उसकी काउंसलिंग करें कि आप माशाल्लाह से बिल्कुल सर अच्छे खासे जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं भीख मांगने के लिए, उनको बताएं कि अल्लाह ने आपको अगर पूरे आज़ाद दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह के, आप मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं। हमें सर हमारे नंबर पे कॉल करें, हम उनको रोज़गार देंगे, हम उनको स्किल सिखाएंगे। हमने बहुत सारे ट्रांसजेंडर को कॉथम से, हमने चिप से उनको कलनरी कोर्सेज करवाए,
0: अच्छा।
1: फूड पांडा में जॉब करवाई उनको,
0: अच्छा।
1: स्कूटीज फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटीज लेके दी, जॉब तक करवाई हैं, और हम स्किल्स भी दे रहे हैं। उनमें से अगर कोई खुद का काम करना चाहता है तो करें सर, ब्यूटिशियन का उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो अपना काम करें।
0: यानी कि हर चीज़ फैसिलिटेट किया जाएगा और पूरा गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफर्स हैं उन लोगों के लिए जो मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं। और ये अच्छा हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए, अगर कोई किसी बेगर की कि फकीर की किसी की अरे कोई इस तरह का सपोर्ट करें, आपकी वेबसाइट को विजिट कर लें या
1: जी बिल्कुल, हमारे सोशल मीडिया पेज पे हमारे वेबसाइट पे नंबर मौजूद है, प्लस आप 15 पे आप लिंक अप कर सकते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ, और बाकी मैं आपको नंबर जो है अभी अनाउंस
0: ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा कि हम बेसिकली हम अपने उस पे चला देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ना,
1: जी बिल्कुल,
0: हम सोशल मीडिया की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे,
1: सिंगल क्लिक पे कोई भी किसी किस्म का बैगर से रेलेवेंट है, आप कोई अपनी सजेशन देना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी किस्म का कोई हरासमेंट का है, आपको लाइसेंसिंग से रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बैगर से रेलेवेंट कोई इशू है, आप किसी और की कंप्लेन करना चाहते हैं, तो सिंगल क्लिक पे सिटी ट्रैफिक।
0: लेकिन आपने कंप्लेन गलत नहीं करनी, यानी कि किसी से अगर आपका कुछ मसला है और इशू है और वचले इंसाफ की बुनियाद
1: पर बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि गलत कंप्लेन के लिए भी सीटीओ साहब ने तमाम जो ट्रैफिक फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको सर जो बॉडी कैम दे दिए, तो
0: अच्छा।
1: अगर आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करेंगे तो ये याद रखिएगा कि तमाम चीजें उनके पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये ना हो कि आपको वो कहते हैं ना कि लेने
0: के देने पड़ जाए। अच्छा तो, ये 15 पे लोग अक्सर कॉल करते हैं और जारी बात है एक बड़ा अहम नंबर है, कोई गलत कॉल करता है इस सूरत में उसकी क्या सजा है?
1: सर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है,
0: अच्छा।
1: वो हमने विजिट किया जब से सिटी को तो बताया उन्होंने कि 15 पे बहुत सारी कॉल्स ऐसी होती हैं कि वो बिला वजह ही हाँ जी कैसे हैं आप ठीक हैं इस तरह, तो अगर उनके पास सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि सर अगर आपने उनको कॉल किया है तो उनके पास रिकॉर्ड आ गया जितनी दफ़ा आपने कॉल की है, जो रिपीटर होते हैं ना उसको उसके मुताबिक ही डील किया जाता है, अगर तो कोई माइनर सी बात हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई मेजर कोई इस किस्म का स्कैम करते हैं तो
0: अगर कोई बार बार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और आप वैसे भी गैर जरूरी तौर पे इतने आम नंबर पे कॉल नहीं कर सकते। अच्छा मैंने देखा रोड्स के ऊपर भी बूथ लगे हुए हैं 15 के,
1: जी
0: वो ऑपरेटिव हैं?
1: जी सर बिल्कुल बिल्कुल ऑपरेटिव है, मैं कह रही हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना अपडेट कर दिया गया, हर चीज को डिजिटल कर दिया है, अब देखें पहले हम मैन्युअली चालान करते थे, अब हम हो ना हो कैमरा चलान कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता और कैमरा आपको कैप्चर कर लेता है, वो तो तब पता चलता है जब चलान आपके घर पहुंच जाता है, और उसमें सबसे जो बात है पैनिक बात कह दें कि आपके साथ आपकी पूरी पिक्चर आती है, तो उस बात पे आप बिल्कुल अवेयर हो जाएं तमाम के अगर आप आउट ऑफ द वे कोई बात करने जा रहे हैं तो साथ बैठा हुआ आपके नजर आ जाएगा कि कौन बैठा हुआ है, तो अपनी इज्जतें अपने हाथ में हैं, सो वायलेशन करने से पहले सोच लें कि आप किसके साथ बैठे हुए हैं।
0: ये बहुत जरूरी है जी, आप लोगों ने जब भी आना तीसरा का काम हो तो प्लीज सोच लें कि कैमरे की आंख आपको हर वक्त अब देख रही है, और लाहौर सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो हर वक्त ऑन हैं और हर वक्त आप पे नज़र रखे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन साहिबा, कहाँ से?
2: मैं लाहौर से किरण बात कर रही
0: हूँ। जी किरण, क्या जी जी
2: माशाल्लाह बहुत अच्छा,
0: बहुत शुक्रिया।
2: बहुत ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं जो आज तक पता ही नहीं था।
0: अच्छा, बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली जो आज तक पता नहीं था। चलें, ज़बरदस्त किरण, आपको तो कोई मसला नहीं ना, कोई इशू, कोई सवाल, कोई चीज़ पूछना चाहेंगी मैडम से?
2: सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है,
2: उसमें अलग ही सी बात है, क्योंकि ज़्यादा है नहीं ना।
0: हाँ ये तो है। चलें, थैंक यू किरण, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
2: तो अच्छा,
0: चलें, बहुत शुक्रिया जी, आप सुनते रहिए, थैंक यू। किरण थी जी, कह रही थी कि बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और बहुत सी चीज़ों का पता चला जो हमें आज तक नहीं पता था।
1: थैंक यू सो वेरी मच किरण।
0: एक और कॉलर ले लेते हैं, क्योंकि कॉल्स लगातार आ रही थी तो आपसे बात चल रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन हमारे साथ? जी कैसी हैं? हाफिजा सिदरा कुरैशी फ्रॉम मंदरा। जी जी, मैं फरहान खान अर्ज कर रहा
3: हूँ।
0: ओह माय गॉड, हैं ये क्या हुआ?
3: ये भाई।
0: आप ऑन एयर हैं और आप सुन रही थी शो भी?
3: बिल्कुल भी नहीं पाई, मैंने तुक्के पे कॉल की।
0: अच्छा, तुक्के से कॉल की है, चलें आपकी कॉल मिल गई है तुक्के से, तो खुश रहें, सलामत रहें, चूँकि आप सुन नहीं रही तो। जी जी
3: बताएं क्या
0: वो हमारी ना गेस्ट आई हैं तो उनसे हम बात कर रहे हैं। मैडम फहमीदा ज़ीशान हमारे साथ हैं, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच हाफिज़ा, अपना ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी फ्राइडे को।
3: ठीक है
0: जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जनाब, आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, तो मैं सोच रहा कि काफ़ी देर से कॉल्स आ रही हैं तो हम आपकी कॉल्स को भी शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम फरहान साहब, आपको और ये मैडम जो आई इनको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, सुन्नाबाद लाहौर से।
0: जी जी सलमान साहब,
4: ये आज तो बड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है माशाल्लाह जी, बच्ची ने बहुत मालूमात दी है और हम अपने बच्चों बच्चियों को ये जरूर ड्राइविंग के लिए भेजेंगे सीखने के लिए, और ये बड़ी मामूली सीख रखी हुई है इन्होंने। और मैंने वैसे 7 साल चलाई ड्राइविंग की है बड़ी केयरफुली।
0: अच्छा,
4: एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ, अल्लाह की मेहरबानी,
0: माशाल्लाह
4: बिल्कुल बिल्कुल आहिस्ता साइड पे रखे, और जब कभी बच्चों को बिठाया था तो और आहिस्ता हो गए हैं।
0: ओके,
4: और बड़ी केयरफुली से चलाई है, और ये इन्होंने बड़ी अच्छी मालूम, ये कजाफी स्टेडियम में है ना जहाँ सिखाते हैं ये बच्चों को।
0: अच्छा जी, कहाँ पे सिखाते हैं, पोषण सेंटर कहाँ का है?
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिसिएशन। और हमारे जो ड्राइविंग स्कूल है वो है लिबर्टी सेंटर में है, हमारा आबशार ड्राइविंग स्कूल है जेल रोड पर, हमारा ड्राइविंग स्कूल है गार्डन टाउन में, DHA में है, काना सेंटर है, मनावा लाइंस में है, ग्रेटर इकबाल पार्क में है, बहरिया टाउन में है, सफारी गार्डन में है, टाउनशिप में है।
0: माशाल्लाह आपको सारे याद है।
1: जी बिल्कुल,
4: दो तीन तो हमारे नज़दीक ही हैं बस।
0: बस आप किसी एक में भेज दें बच्चों को, और बड़ा इकोनॉमिकल है, सिर्फ 10,000 रुपये।
4: मैं ये तो कह रहा हूँ कि बच्चियाँ ये आजकल स्कूटियां वगैरह,
0: नहीं स्कूटी वाला के लिए तो 3,000 रुपए। जी वो
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल, बिल्कुल। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो वाओ है, जो वाओ है विमेन ऑन व्हील, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आप सिर्फ आईडी कार्ड लेके आएंगे, कॉपी लेके आएंगे और फ्री सिखाएंगे बाइक भी और स्कूटी भी।
4: नहीं ये 3,000 आपने कहा है ना, फ्री तो नहीं है ना, 3,000 लेके आएंगे साथ।
1: जी जी बिल्कुल, वो
0: लिबर्टी में है। आप कॉल बंद करें, मैं आपको बताता हूँ कैसे, आप सुनिए गौर से सुनिएगा। अब तो मुझे भी समझ आ गई, अब चूंकि हम शो करते हैं ना, अगर आपकी इजाजत होगी तो हम अपने शो में इसको बार बार रिपीट करेंगे, हम लोगों को बताएंगे अपने शोज में, रात के भी दिन के शो में। अगर आप लोग ड्राइविंग सीखना चाहते हैं खवातीन के लिए खास तौर पर, ड्राइविंग सेंटर 12 हैं लाहौर में, जिसमें आपने सिर्फ 10,000 रुपये में आपको 3 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और बड़ा ही डिटेल ट्रेनिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें सिखाया जाएगा, रूल्स ऑफ रेगुलेशन बताए जाएंगे, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। मोटर बाइक अगर कोई सीखना चाहता है ख़ासतौर पर स्कूटी या मोटर बाइक, तो उसके लिए मंथली जो कोर्स है वो 3,000 का मैडम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
1: जी जी बिल्कुल,
0: 3,000 रुपया
1: 3,000 स्कूटी के लिए है लिबर्टी में,
0: 3 वीक्स।
1: जी जी बिल्कुल, 21 दिन का कोर्स,
0: 21 दिन का, और गाड़ी का भी
1: 21 दिन का कोर्स है, और उसकी 10,000 फीस है,
0: और वो भी फीमेल और मेल दोनों के लिए?
1: मेल और फीमेल दोनों के लिए है बिल्कुल। जैसे मैंने आपके कहा कि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या बैगर से रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमारे 15 पे तो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं नंबर आपको बता देती हूँ, 0322-563-888। आप कहीं पे कोई बैगर देखें फौरी तौर पे कॉल करके आप नोट करवा सकते हैं। कहीं आपके साथ कोई मिसहैप हो गया है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है, हर सूरत में आप हमारे इस नंबर पर रابطہ करें, हम 24/7 आपके लिए हाजिर हैं।
0: जबरदस्ती 24/7 आपको ये सर्विस मिल सकती है। और आप लोग अगर कोई आपकी क्यूरी है इस पे आप बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात, बहुत जिम्मेदारी से आपने कॉल करनी है और कोई ऐसी कॉल नहीं कि जिसमें आपने वक्त ज़ाया करना है या फिर आप कहें कि यार चलो कॉल करके टाइम पास कर लें। आपने पुलिस को अगर कॉल करनी है तो फिर आप ये देख लें उसके कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो बड़े ख़तरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं दे सकते और आपने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का एक मुजाहरा करना है। अच्छा, आप एज ए फीमेल ज़ाहिर बात है चैलेंजेस तो होते हैं। वो बच्चियाँ जो पुलिस में आना चाहती हैं, पुलिस की नौकरी करना चाहती है, उनके लिए आप क्या सजेशन उनको देंगी, आएँ और कैसे आएँ, इसका क्या तरीकाकार है, आया कि उनको आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
1: नहीं नहीं सर, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ कि अगर आपकी बच्चियों के पास कोई स्किल है तो उसको यूज़ ज़रूर करें, उसको यूटिलाइज करवाएं।
0: ठीक है।
1: और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए।
0: ठीक है।
1: बाकी रही बात जॉब की, तो जॉब सारी ही अच्छी होती है, ट्रैफिक पुलिस भी और पंजाब पुलिस भी। पुलिस की जॉब को ये बहुत पहले की बात है कि जब कहते थे जी पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है, जॉब सारी अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और आप यकीन जाने कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जितना मुझे मुकाम, इज्जत और रिस्पेक्ट दी है, हम अपने आप को सिटी ट्रैफिक पुलिस में आके सिक्योर समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रैफिक पुलिस का इतना अच्छा एटमोसफेयर है कि आप बींग अ फीमेल आप जिस भी जगह पर जाएंगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी।
0: nice.
1: तो जरूर बच्चियां जरूर आए पुलिस में। और इसका अनाउंसमेंट होती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जो जब भी आती है वैकेंसीज तो हम लोग अपने मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे जो है अनाउंस कर देते हैं फिर बकायदा तौर पर। लेकिन इसका ना थोड़ा सा टफ है, कुछ तो हाइट पे मर जाते हैं, कुछ बेचारे टेस्ट नहीं पास कर सकते, कुछ रनिंग में फेल हो जाते हैं, कुछ पेपर में रह जाते हैं।
0: टेस्ट और मुश्किल है, इतना आसान
1: बहुत
0: नहीं है।
1: मुश्किल है सर। और एंड पे फिल्ट्रेशन के बाद फिर सिर्फ वही लोग आते हैं जो अपना क्राइटेरिया पूरा करते हैं, मेजरमेंट का, अपने रनिंग का, अपने रिटन टेस्ट का, अपने इंटरव्यू का। तो जरूर आए, बच्चियों को जरूर आप लेके आए, उन विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। देखें कहते हैं अच्छी माए होंगी अच्छे मुआशरे आएंगे,
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो अगर आपकी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ाएं, अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं उन्हें इंडिपेंडेंट करें। और जब पेरेंट्स का साथ होता है तो हर बच्ची इस बात के लिए समझती है कि उसकी लिमिट। हाँ जी, वो एक आपने मुहावरा सुना है
0: जी मैडम
1: के सोने का नवाला और शेर की नजर। तो पेरेंट्स को जरूर अपनी बच्चियों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन शेर की नजर जरूर रखनी चाहिए। ये जो मुआशरा चल रहा है हर तरफ दरिंदे हैं, हमने खुद को खुद सेव करना है और हमारी फैमिली ने हमें सेव करना है। तो उस लिहाज से अपनी बेटियों को बहादुर बनाए,
0: बहुत अच्छा मैसेज,
1: बहादुर बनाए, जरूर बहादुर बनाए कि वो बच्चियां मुकाबला कर सके हर उस शख्स का जो गंदी नजर से उनकी तरफ देखे।
0: और बहुत अच्छा मैसेज है। और बच्चों को छोटी उम्र से ट्रेन कर देना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और
1: सर, उनको मैं इस हक में हूँ। हम कहते हैं ना कि नहीं ये बच्ची है इसको ऐसे नहीं, बच्चियों को भी बच्चों की तरह स्ट्रांग बनाए। इस दौर के बाद जो आने वाला दौर है उसमें सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम अपनी बच्चियों को लिमिटेड रखेंगे।
0: और वैसे भी हर दौर के बारे में कहा गया, आने वाला दौर उस दौर से टफ होता जाता है, मुश्किल होता जाता है, कठिन होता जा रहा है। अब तो दौर भी मैडम सोशल मीडिया का दौर है
1: सर। अब मैं तो जहाँ पे बैठती हूँ मैं यही कहती हूँ कि अब तो जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तब से ही पॉलिटिशियन में होते हैं।
0: हाँ।
1: वो पॉलिटिशियन, आप यकीन जाने हमें उन बातों का अब तक पता नहीं जो बच्चों को है। एक बच्चा न्यू बॉर्न है ना, वो रो रहा होगा, माँ उसको हिलाएगी, वो नहीं समझता। उसको मोबाइल की लाइट आप ऑन करके देंगे वो खामोश हो जाएगा, उसको पता होगा। ये सोशल मीडिया ने इतना कर दिया वो एक्टिव। तो बच्चों को ज़रूर आप फैसिलिटेट करें, लेकिन उन पे नज़र ज़रूर रखें। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की गफलत आपके बच्चों को स्पॉइल कर सकती है। अपने बच्चों की एक्टिविटी पे ज़रूर नज़र रखें
0: और उनके साथ आप बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहें।
1: बिल्कुल सर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो लेकिन चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। ये मैं पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि आने वाले दौर में ज़्यादा जो है चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें। आप यकीन जाने, आप अब्रॉड में देखें ना कि छोटे बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं और साथ ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल कह रहे
1: तो आप, हम क्यों नहीं कर सकते भी? हमारे बच्चे भी उतने ही शार्प माइंड हो सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ गई कि पेरेंट्स का इसमें बहुत अमल दखल है कि पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर फैसिलिटेट करें। उनको एक कमरे में, एक लिमिटेशन में ना बंद करके रखें, उनको आजाद करें।
0: वो आप अगेन वही बात ना कहे, देखो शेर की आंख से खिलाओ सोने का
1: जी
0: निवाला।
1: बिल्कुल, सोने का निवाला दें, जितने मर्जी नवाले दें, लेकिन शेर की नजर रखनी है।
0: अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में दोबारा आ गया इस हवाले से कि अक्सर सिग्नल पे देखा गया है कि वो शीशे साफ कर रहे होते हैं वाइपर लेके, तो बाद में फिर डिमांड पैसों की करते हैं, तो आप उनके ऊपर भी एक्शन?
1: सर, वो बैगर्स में आता है। वो सिर्फ ये है कि आप ये समझ लें कि वो एक टोकन होता है उनके लिए। जैसे दो गजरे पकड़ लिए, दो बुक्स पकड़ ली, चार बाल पॉइंट्स पकड़ ली, वो माशाल्लाह से सुबह से शाम तक खड़े होंगे ना, वो चार बाल पॉइंट उनके पास ही रहेंगे, वो चार गजरे पास ही रहेंगे, वो दो बुक्स पास ही रहेंगी, और वो जो वाइपर वाले हैं वो भी इसी में ही है। आपकी साफ स्क्रीन को गंदा भी कर देंगे और फिर पैसों की डिमांड करेंगे, पैसों के बगैर आपको जाने नहीं देंगे।
0: और वाइपर गंदा होता है, खराब होता
1: है। आप हजार दफा कहेंगे, आप इशारा करेंगे नो नो नो नो, उन्होंने कर देना, और अगर हल्का सा भी करेंगे साथ ही वो पैसों की डिमांड करेंगे। वो भी सर इसी कैटेगरी में आते हैं।
0: बदतमीजी भी करते हैं ना, पैसे दो तो
1: बहुत ज्यादा, वो फिर बोलते भी हैं,
0: बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं कि पैसे मैंने एक शीशा साफ किया। बिल्कुल ठीक मैडम, थैंक यू सो मच। आपकी पहले तो तशरीफ़ आवरी का अगेन बहुत शुक्रिया, और इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी, सुनने वालों के लिए भी, देखने वालों के लिए भी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हम इंशाल्लाह आपको गाए बगाए इनवाइट करते रहेंगे रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 के सामीन के लिए और हमारे सुनने वालों और देखने वालों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि ये ऐसा काम है कि इसकी जितनी अवेयरनेस बार बार दी जाए, बार बार लोगों का अवेयर कराया जाए, उतना ही ये ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है बैगिंग की, अगेन वो जिस मैडम ने बार बार कहा, मैंने भी कहा, खुदारा आप फ़कीरों को पैसे देना बंद कर दें, फ़कीर बंद हो जाएंगे, खुद ही घर में चले जाएंगे। हम पैसे देते हैं तो फ़कीर होते हैं। लॉ की बात की, रोड सेफ्टी की बात की, अगर आपका चलान हमारा चलान किया जाता है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए किया जाता है। आपका चलान हो ना, फिर नेक्स्ट टाइम आप और हम अवेयर होंगे, हेलमेट पहनना है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन की पाबंदी करनी है, लाइसेंस अपने पास रखना है। अच्छा, ये एक सवाल जाते जाते बस बताइए, लाइसेंस अगर पास ना हो, मोबाइल में अगर ई लाइसेंस हो, अगर वो भी ना हो?
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर नहीं है, हमारी वन ऐप चल रही है, फौरी तौर पे आपके आईडी कार्ड पे हम क्लिक करेंगे, ई लाइसेंस आ जाएगा। वो ई लाइसेंस भी उतना ऑथेंटिक है जितनी हार्ड कॉपी है।
0: okay.
1: और बाकी बात चलान की, जैसे आप बात करें, तो हम, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, अपनी जिंदगियों को महफूज करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए।
0: बिल्कुल जी, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। मैडम फहमीदा ज़ीशान हमारे साथ आज के प्रोग्राम में थी। आप इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर और इंचार्ज एंटी बैगर स्क्वाड हैं। मैडम थैंक यू सो मच, जज़ाकल्ला। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही कौम की खिदमत करती रहें, और इसी तरह ही आप अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे आपको, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क है, इतना आसान काम नहीं है। कहना और सुनना बड़ा आसान है, जो फील्ड में होता है, जो कर रहा होता है, जो पूरा एक जंग लड़ रहा होता है, उसके लिए बड़ा टफ टास्क होता है। सो अगेन थैंक यू सो मच। मैं भी चाहूँगा इजाज़त अपने सुनने वालों से अब तक के लिए। अभी हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, अभी एक हम ट्रैक चलाएंगे, उसके बाद हम दोबारा लॉन्च कराएंगे। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 101। मुझे कहते हैं फरहान खान, और आपका हमारा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में अभी मज़ीद, लेकिन अभी हम एक ट्रैक चलाएंगे, फिर लॉन्च कराएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, एंड मैडम अगेन थैंक यू सो मच फॉर यू।

0: वाले से लोगों के बड़े मसाइल हैं. पहले तो बताएं, न्यूरोसर्जन जो रहता है, न्यूरोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, इसमें फ़र्क क्या है वैसे?
1: जो न्यूरोसर्जन होता है वो ना सिर्फ मेडिसिन के साथ बल्कि सर्जरी के साथ भी पेशेंट्स को ट्रीट करता है, मगर जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं, वो सर्जरी नहीं करते. तो हम ब्रेन की और स्पाइन की दोनों की सर्जरीज कर सकते हैं. जहाँ जहाँ पे नर्वस टिश्यू है हम उसकी सर्जरी करते हैं, जैसे मोरे हैं, जैसे दिमाग है, तो हम उसकी सर्जरी करते हैं. तो न्यूरोसर्जन वो होते हैं जो मेडिसिन भी देते हैं और सर्जरी भी करते हैं.
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, मैं क्विकली आपसे सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने सुनने वालों को दे सकें, दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें कौन से ऐसे मसाइल हैं जो ज़्यादा आप देखने में मिलते हैं?
1: सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो एक तो सर दर्द है, माइग्रेन है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आजकल कॉमन मसला है स्पाइन को लेके कमर दर्द, मोहरों का दर्द, और इसके अलावा पेशेंट को टांगों में दर्द जाती है, टांगें सुन्न होती हैं, जैसे कीड़ियाँ चलती हैं, ये मसाइल हैं. बच्चों के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि माँ जब प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड नहीं खाती तो उसकी वजह से बच्चे की कमर में प्रॉपर मोरे नहीं बनते या दिमाग पूरी तरह नहीं बनता, और वो मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील्स बन जाती हैं, जो कि ब्रेन से थोड़ा सा कोई पार्ट या बाहर आ सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट बॉडी से जो उससे बाहर रह जाता है, तो वो इन्फेक्ट हो सकता है, उससे गर्दन तोड़ बुखार, ये सारी चीज़ें होती हैं.
0: अच्छा,
1: तो ये दो मेजर मसाइल हैं जो बच्चों में, बड़ों में और जवान लोगों में हैं. ये मोस्ट
0: आजकल ज़्यादा है
1: जी, आजकल बहुत ज़्यादा हैं. इसके अलावा डिप्रेशन, एनजाइटी, वो भी इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं.
0: अच्छा, इसी में आ जाता है
1: जी, बिल्कुल.
0: अच्छा, ये जो डिप्रेशन और एनजाइटी है जिसका हर दूसरा बंदा शिकार है, डिप्रेशन और एनजाइटी से क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो आपके खाली न्यूरो में आ रही हैं?
1: सबसे ज़्यादा सर दर्द, पट्ठों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, गर्दन के पट्ठों का खिंचाव, कमर के पट्ठों का खिंचाव, माइग्रेन, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन एंजाइटी में ज़रूर ट्रिगर होती हैं.
0: अच्छा,
1: क्योंकि जब पेशेंट डिप्रेशन और एंजाइटी में हर टाइम रहेगा तो उसका नर्वस सिस्टम हर टाइम फायर और फ्लाइट मोड पे रहेगा.
0: ओके.
1: जैसे कोई हमारे पे एक आफत आने वाली होती है, हमारा जिस्म अपने को तैयार करता है ना, इसी तरह बैक एंड में हर टाइम यही चल रहा होता है कि मुझे कुछ होने वाला है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली फायर एंड फ्लाइट मोड पे चली जाती है.
0: ओके.
1: उस तरह जैसे हमारे पट्ठे तन जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एड्रेनलिन रिलीज होता है, ये सारी सिचुएशन जब होती है, जैसे कि किसी के पीछे कोई एकदम जानवर जैसे कोई पड़ जाता है, या कोई आप किसी भी तरह का ये जो मसला है उसमें जो सिचुएशन होती है वो हर टाइम बॉडी रहती
0: है. बिल्कुल ठीक है.
1: और जब भी आप इस तरह तेज भागेंगे आपके पट्टे खिंच जाएंगे, ये आप सोचें कि रेस्टिंग मोड में आपके साथ हो रहा है.
0: अच्छा,
1: तो हर टाइम आपके पट्टे खींचे रहेंगे, उससे ये सर के सारे पट्टे, गर्दन के पट्टे, कमर के पट्टे, ये खींचेंगे, आधे सर में दर्द, माइग्रेन, वो भी स्ट्रेस से होती है.
0: ओके.
1: तो ये सारी चीजें, हेडेक, कॉन्टिन्यूस हेडेक, स्ट्रेस हेडेक, ये सारी चीजें उससे ट्रिगर हो रही होती हैं.
0: और ये इसके रीजन आप बताते हैं कि स्ट्रेस इज द मेन मेजर रीजन?
1: बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, ये दो मेजर चीजें हैं जो लोग बेसिकली हमारे पर प्रेजेंट करते हैं इन डिजीज के साथ, कि सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, और हर दूसरा बंदा कहता है मेरा एक सीटी करवा लें, मेरा एक एमआरआई करवा लें, मेरे सर में कोई ट्यूमर तो नहीं है, और वो बेसिकली बैक एंड पे स्ट्रेस की वजह से उसको हेडेक.
0: अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि सर में ट्यूमर अगर किसी के है और उसको इनिशियली नहीं पता चलता, इसकी क्या अलामत होती है, कैसे डायग्नोज हो सकता है
1: ट्यूमर? हर ट्यूमर की डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती हैं, वो जिस दिमाग के हिस्से के अंदर होगा उसकी अपनी अलामत आएंगी. जैसे अगर वो फ्रंटल के हिस्से में, आगे वाले हिस्से में है, उसमें पेशेंट की हाथों पाँव की ताकत, जो वो ये नहीं कि कमज़ोरी, काम करना छोड़ जाना, मतलब कि हाथ की ग्रिप नहीं है, पाँव चला नहीं जा रहा, बिल्कुल मतलब वो साइड जैसे मारी जाती है, वो इस तरह की सिचुएशन. दूसरे नंबर पर फिट्स होते हैं पेशेंट्स को, दौरे जिसको कहते हैं वो पड़ते हैं. तीसरे नंबर पे पेशेंट को वॉमिटिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा,
0: जो किसी तो लेटर आम नहीं होता, इनिशियली कैसे डायग्नोज हो सकता है?
1: यही कॉमन सिम्टम्स इसी तरह स्टार्ट होते हैं, या हेडेक होगी, बहुत सीवियर हेडेक, जो कभी नहीं हुई, आम सिंपल हेडेक नहीं.
0: अच्छा,
1: उसके साथ वॉमिटिंग बहुत ज्यादा, और या झटके लगना, और बाज लोग प्रेजेंट करते हैं कि उनकी कोई वीकनेस, बॉडी की एक साइड वीक हो जाती है जिस साइड पे ट्यूमर है. इस तरह अगर साइड पे ट्यूमर है जिसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं, उसमें फिट्स होते हैं, स्टार्ट ही फिट्स से होती है, मेमोरी कम हो जाती है. जैसे पिछले हिस्से में है जैसे जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है अगर उसमें है तो वो विजन का इशू होता है। इस तरह पिट्यूटरी ट्यूमर जो है, जो गुदूद है हमारा हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसमें पेशेंट को हेडेक्स होती हैं, विजन जाती है, पेशेंट ये कहता है कि
0: नजर कम आ रहा है,
1: एक टनल नहीं, जैसे एक टनल के अंदर देख रहे हैं ना, साइडों से चीजें नजर नहीं आती, सिर्फ सामने का नजर आता है।
0: ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक मेजर जो प्रॉब्लम लोगों में अक्सर डायग्नोज भी नहीं हो पाती, माइग्रेन जो होती है वो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, इसकी क्या अलामत होते हैं, इसकी क्या निशानी होती है, और माइग्रेन की दर्द कहाँ से उठती है और कहाँ तक जाती है?
1: माइग्रेन बेसिकली जिसको दर्द शकीका बोलते हैं, एक साइड की पेन होती है हेडेक यूनिलेटरल, लाइक अगर इस तरफ की पेन है तो इस तरफ होगी, अगर इधर की है तो इस तरफ होगी, वो आधे सर में रहेगी।
0: ठीक है,
1: आंख के पीछे दर्द होगी, इसका एक ऑरा होता है, ऑरा ये होता है कि पेशेंट को फील हो जाता है मुझे दर्द होने लगी है। फिर दूसरे नंबर पे इसमें आंख में शदीद पेन होती है, आंखों के पीछे पेन, वॉमिटिंग आ सकती है, नोजिया फील होता है।
0: ठीक है,
1: इसका ड्यूरेशन 2 मिनट से लेके 2 वीक्स तक भी हो सकता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये पेन किसी ना किसी स्ट्रेस फैक्टर से ट्रिगर होती है।
0: अच्छा,
1: वो कोई भी हो सकता है, वो टेंशन, वो खाने पीने में जो चीज़ बुरी लगी, इन्वायरमेंट में कोई चीज़ बुरी लगी, या आप किसी एक मुसलसल स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं।
0: ठीक है,
1: जब ये ट्रिगर करते हैं तो पेशेंट को माइग्रेन शुरू हो जाती है। और फिर अगर माइग्रेन को बेसिकली हमारी कोशिश होती है प्रोफिलैक्टिकली रोकें, यानी होने से पहले, अगर आप उसको होने से पहले रोक लें तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है।
0: राइट।
1: और अगर हो जाए तो फिर वो थोड़ा सा अपना साइकिल पूरा करती है, उस पर थोड़ा सा पेशेंट सफ़र करता है।
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए दिमाग और रीढ़ की हड्डी में वो कौन से मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं?
1: मैंने आपको बताया कि कमर दर्द का मसला इस टाइम बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी में, लोगों को लोअर बैक में पेन और टांगों में पेन, जो कि टांगों में जाती है, टांगें सुन होना, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जो इशू है ये पोस्चर की वजह से है। और इसमें डिस्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि जैसे मोरों के दरमियान जो डिस्क है वो स्लिप हो गई या वो रपच्चर हो गई और वो हरामक्स को दबा देती है, तो उसके अंदर ये सारे मसाइल आते हैं। सर में हेडेक है बहुत ज़्यादा, माइग्रेन है, उसके बाद पिट्यूटरी ट्यूमर्स भी आते हैं, तो ये चीज़ें आजकल कॉमन है।
0: अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि जो मोबाइल फ़ोन है, स्क्रीन टाइम है, क्या ये भी असरअंदाज हो रहा है हमारी?
1: हाँ, बिल्कुल, स्क्रीन टाइम भी असरअंदाज हो रहा है। स्क्रीन टाइम ये है कि जब बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है यूवी रेज के साथ, तो वो एक तो आंखों को बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस देता है, दूसरे नंबर पर ये हमारे मेलाटोनिन को भी कम करता है जो सोने का हार्मोन है।
0: अच्छा,
1: ठीक है। और आप जब रात को खासतौर पर सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, उसमें ये आपकी वो जो सोने की सर्ज है उसको कम करता है, तो इसलिए नींद के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। रिकमेंडेड यही होता है कि आप सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल ना देखें, आंखों को रेस्ट दें और अपनी स्लीप को बेहतर करें।
0: और ये आपकी स्लीप खराब हुई है तो आपकी लाइफ साइकिल खराब,
1: आपकी लाइफ साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा।
0: अगर नींद आप सही पूरी नहीं करते तो उसका आपके न्यूरल जो इश्यूज हैं वो,
1: अगर आप 8 घंटे नींद नहीं पूरी कर रहे तो आपकी एक तो बॉडी के सारे पट्टे खींचे रहेंगे, आंखों पर स्ट्रेस रहेगा, दूसरा आपके जो हार्मोन्स हैं वो सारे सर्कैडियन रिदम के हार्मोन्स हैं।
0: अच्छा,
1: जैसे हमारा कोर्टिसोल है, उसकी सर्ज सुबह आती है, जब आप नींद ही पूरी नहीं होगी तो उस सर्ज का कोई फायदा नहीं होगा, सुबह आप ऊँग रहे होंगे, आपकी एनर्जी बड़ी लो होगी, तो ये पूरी बॉडी थकी थकी फील होगी, आपके कॉग्निटिव फंक्शन, जो सोचने समझने की सलाहियत है, डिसीजन पावर है, वो भी सारी इफेक्ट हो जाती है।
0: बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एपिलेसी का बड़ा इशू है जिसे फिट्स कहते हैं, फिट्स के रीज़न क्या है, क्यों फिट्स पड़ते हैं और इसकी अलामत क्या होती हैं, फिट्स पड़ने से पहले क्या ऐसा ही चीज़ जाहिर होती है?
1: सबसे पहले तो ना मैं कुछ मिथ्स हैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मिर्गी एक पूरी तौर पे काबिले इलाज बीमारी है।
0: अच्छा,
1: ये कंट्रोल हो जाती है, इसमें पेशेंट अगर प्रॉपर मेडिसिन लेता रहे तो उसको फिट्स नहीं होते। दूसरे नंबर पे फिट्स होने के रीज़न बेसिकली 2 रीजंस हैं, एक तो बेसिकली फिट ये है कि हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है नॉर्मल से ज़्यादा, इसमें या तो कोई अंडरलाइंग ट्यूमर हो सकता है, वो बहुत कम लोगों में होता है जिनको ट्यूमर कैसे फिट्स होते हैं,
0: ठीक है,
1: या ये ब्रेन की जो टेम्पोरल लोब है या फ्रंटल लोब है उसके अंदर चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एक्टिविटी डी रेंज होने की वजह से।
0: ठीक।
1: तो ये जो बच्चों में फिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एब्सेंस सीजर होते हैं, एब्सेंस सीजर ये होते हैं कि बच्चा सामने देख रहा है, वो स्टेयरिंग कर रहा है, वो आप ये समझें कि लोगों को पता है कि वो स्टेयरिंग कर रहा है, उसको नहीं पता होता,
0: ठीक है,
1: और वो एकदम से बाज़बा गिर भी सकते हैं, ठीक है, ये होता है। और या वो टॉनिक क्लोनिक सीजर होते हैं जिसमें पूरा फिट्स की अलामत में झटके लगना पूरे जिस्म को इकट्ठे, منہ سے جھاگ آنا، زبان کا کٹ جانا، آنکھوں کا الٹانا اور یورین کا نکل جانا، یہ اس کی علامات ہیں جو پراپر فٹس ہیں،
0: جو پہلی دفعہ ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں،
1: وہ بالکل اس طرح ہی ہوتے ہیں،
0: ٹھیک ہے.
1: اور اس کے علاوہ یہ جو فٹس ہیں اس میں جو ہماری لوگوں کی متھس بنی ہوئی ہیں کہ کوئی چیزیں ہیں یا لوگ اسیب ہیں، اور یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے. اور لوگ کہتے ہیں پھر آواز کیوں آئی منہ سے، سب سے بڑا لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی بول رہا تھا.
0: میں نے ایک نیوز بریک کی جانب جانا ہے آپ کے ساتھ، ہم کنٹینیو کریں گے. سو ہم بڑھیں گے نیوز بریک کی جانب. سو اپنا بہت سا خیال رکھیے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے، ابھی ہم بڑھیں گے نیوز بریک کی جانب.
2: کمنگ اپ نیکسٹ، 101 نیوز ہیڈ لائنز.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम की सरबराहाने मुमलकत कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किसी जहती सफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात में फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल ख़वारिज से ताल्लुक रखने वाले 21 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं।
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें। शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: This is FM 101.1.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम की सरबराहानी मुमलिकत कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वामे मुत्तहिदा के सिक्योरिटी जनरल ने कसीर जहती सफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ वाक़ियात में फितनातुल हिंदुस्तान और फितना उल ख़वारिज से ताल्लुक रखने वाले 21 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं।
1: मूसलाधार बारिश और शदीद ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

0: Un tío. I love FM 101.
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, 100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। जरा मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। प्रोग्राम है हरफे जुनू। हर मंगल को 12 से 2 बजे रात FM 101 नेटवर्क पे आपसे मुलाकात रहती है। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आपकी मौजूदगी का, आपकी यहाँ पे आमद का, आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। आपके मैसेजेस और आपकी कॉल्स मुझे मिलना शुरू हो चुकी हैं। फोन की घंटी मुसलसल बज रही है, गो कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं कि उमड़ उमड़ कर आती हैं। आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। मैसेजेस और कॉल्स करने का तरीका कार वही सिंपल, पुराना और सादा सा है। SMS करने के लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे टाइप करेंगे 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज और उसे भेजेंगे 4471 पे। 4471 पे आपने हमें मैसेज करना है। जो ही आपका मैसेज मिलेगा उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा प्रोग्राम में। उससे भी आसान तरीका ये है कि अगर आप फेसबुक पे आए, फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज FM 101 लाहौर अगर आप सर्च करेंगे तो यकीनन आपको हमारा पेज मिल जाएगा। इस पेज पे आके आप हमारे प्रोग्राम की पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से। कॉल्स के लिए आप हमें कॉल करेंगे 042 111 111

0: मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा, ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा, ये तय हुआ था। बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा, ये तय हुआ था। ये क्या कि सांसें उखड़ गई हैं सफर के आगाज से ही यारो, ये क्या कि सांसें उखड़ गई हैं सफर के आगाज से ही यारो। कोई भी थक कर न रास्ते में निढाल होगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा, ये तय हुआ था। बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा, ये तय हुआ था। वही हुआ ना, वही हुआ ना, बदलते मौसमों में तुमने हमको भुला दिया है। कोई भी रुत हो न चाहतों को जवाल होगा, ये तय हुआ था। जुदा हुए हैं तो क्या हुआ फिर, यही तो दस्तूरे जिंदगी है। जुदाइयों में न कुर्बतों का मलाल होगा, जुदाइयों में न कुर्बतों का मलाल होगा, ये तय हुआ था। चलो के फैजान कश्तियों को जला दे गुमनाम साहिलों पर, चलो के फैजान कश्तियों को जला दे गुमनाम साहिलों पर, कि अब यहां से ना वापसी का सवाल होगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था। बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा, ये तय हुआ था। कोई भी थक कर न रास्ते में निढाल होगा,
1: दिल तन्हा,
0: ये तय हुआ था।
1: क्यों हम
0: जुदाइयों में न कुर्बतों का मलाल होगा, ये तय हुआ था।

अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने। ज़रीन हमारे साथ हैं और ज़रीन कहती हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, बहुत सी दुआएं आपके लिए, आमीन। बहुत शुक्रिया ज़रीन आपका, आपने हाल पूछा। तुम्हारा ख़त मिला जाना, तुम्हारा ख़त मिला जाना वो जिसमें तुमने पूछा है कि अब हालात कैसे हैं, मेरे दिन रात कैसे हैं। मेहरबानी तुम्हारी है कि तुमने इस तरह मुझसे मेरे हालात पूछे हैं, मेरे दिन रात पूछे हैं। कभी सागर किनारे पर किसी मछली को देखा है कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती हैं मगर फिर छोड़ जाती हैं। मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे दिन रात ऐसे हैं। कभी सागर किनारे पर किसी मछली को देखा है कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती हैं मगर फिर छोड़ जाती हैं। मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे दिन रात ऐसे हैं। तुम्हारा ख़त मिला जाना जिसमें तुमने पूछा है कि अब हालात कैसे हैं। तड़पते हुए सिसकते हुए एड़ियां रगड़ते हुए दिन रात शबो रोज और हालात गुजर ही जाते हैं, क्या कीजिए। सलमा है हमारे साथ, सलमा बहुत शुक्रिया आपका, आपके मैसेजेस का, आपने कुछ अशार भेजे हैं।

0: वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आपकी कॉल्स लेते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है और क्या क्या कहना है इनका। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है।
1: शुक्र
0: लेते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है और क्या क्या कहना है इनका। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ।

0: हालचाल पूछना, छोटा ब्याह कैसा है?
1: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप की बस दुआएं चाहिए, सब ठीक है, सब खैरियत है।
0: अल्लाह से तंदुरुस्ती दे ब्याह। अभी भी आवाज ना आपकी चाल नहीं दे रही, तबीयत खराब है। तो मैं भी 15-20 दिन हो गए मेदे की गैस मरीज हूँ। अभी मेरी भी बड़ी हालत खराब थी, तो पिछले हफ्ते मैंने सुना ही नहीं, तबीयत खराब थी। तो मैंने जेन में यही था, मैं कहा आप नहीं आए, लेकिन आपकी तबीयत अब सुनी है ना, तो मैं कल में आपको से तंदुरुस्ती दे। अल्लाह जानता है, अच्छा नहीं लगता लेकिन अच्छा भी लगता है कि मैं दुआ मांगती हूँ ना नमाज में, तो मैं जब कहती ना ज्ञान जम के मुझे बड़ा प्यार आता है। मैं कहा मेरे भरा अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, जिते रहे खुश रहे।
1: बहुत शुक्रिया बुशरा जी, थैंक यू सो मच आपने कॉल की।
0: हाँ नहीं नहीं, जीते रहे खुश रहे, तो अल्लाह आपको सही तंदुरुस्ती दे अपने हिज्जो मान में।
1: आमीन जी आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। आज हम कुछ शेर व शायरी के मूड में हैं, सो अगर आप कुछ शेर सुनाना चाहें, कोई नज़्म कोई गज़ल सुनाना चाहें, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैं मुंतज़र रहूँगा आपका, आपकी कॉल का। देखते हैं हमारे साथ और कौन कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: या भाई मैं आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ, बड़े अरसे के बाद मेरी कॉल लगी कि
1: चलें आपको हम मुबारकबाद देते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
2: सर बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, कभी भी मेरी कॉल नहीं मिलती आपके शो में। एक दफा आपको याद होगा, दो दफा ऑफेयर बात हुई थी आपसे, तो ऑनर पर कॉल मिलती नहीं है।
1: चलें आज आपकी मिल गई, आप बताएं अब आप क्या कहना चाहेंगे ऑनर।
2: इतने चाहने वाले हैं आपके माशाल्लाह, तो सलामत रहें खुश रहें। सुना कि आपकी तबीयत अच्छी हो गई है तो बहुत खुशी हुई। आपने बताया नहीं आप मुकम्मल तौर पर फिट हुए हैं या नहीं हुए?
1: नहीं अभी प्रोसेस में है, चीज़ें अभी चल रही हैं, इंशाल्लाह मजीद कुछ बेहतरी भी आ जाएगी,
2: इंशाल्लाह मुकम्मल सेहतयाबी मिलेगी आपको। अच्छा शो, आज कोई टॉपिक या सवाल वगैरह,
1: कोई पोइट्री सुनाना चाहें आप?
2: पोइट्री सुनाएं आपको?
1: जी
2: पोइट्री आपको सुना दें। चले वह के रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया।
1: वाह।
2: बिछड़ा कुछ इस अदा से एक रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।
1: क्या बात।
2: दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मुफाद पे मुझे कुर्बान कर गया।
1: बाबा
2: कितनी सुधर गई है जुदाई में जिंदगी, हाँ वो जफा से तो मुझ पे एहसान कर गया। खालिद में बात बात पे जिसको कहता था जान, वो शख्स आखिरिश मुझे बेजान कर गया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके कॉलर्स भी अच्छे अच्छे आते हैं, वो सलमा आती हैं, लीला आती है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलर, उनका इंतजार रहता है, उनको सुनते हैं हम, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपसे भी, रहमान भाई से भी, दोस्त भाई से भी। और सलामत रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए।
1: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: वेल जनाब, कुछ आपके मैसेजेस को शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद हैं। रेहाना खान भक्कर से हमारे साथ मौजूद हैं। रेहाना खान, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी महमूद हैं और कहते हैं वेलकम नाइस प्रोग्राम लाहौर से, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू। मरीना बिलाल हमारे साथ हैं, कहते हैं आरजे ज़ियाब आपकी तबीयत कैसी है, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन जी, बहुत शुक्रिया। इल्मा अल्तमश कहती हैं कि वो मेरे हिस्से में कभी आया ही नहीं, मुझे बड़ा शौक था उसे अपना कहने का। क्या बात है जी। मरीना बिलाल का कहना है कि कहते हैं खुश आमदीद है माहे सितंबर, कहते हैं उम्मीद ना हो तो सितंबर, अब तो बहुत सब्र किया हिजर की शब में, अब वसल की एक सुबह अता कर ऐ सितंबर। सितंबर आ गया है और सितंबर की शायरी भी शुरू होगी है, सितंबर के बाद अब अक्टूबर नवंबर वाले मामलात भी शुरू होंगे और फिर इसके बाद दिसंबर आएगा, फिर मज़ा भी बहुत आएगा, है ना। साइम तबस्सुम है जी, साइम तबस्सुम का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जया भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अंदाज़ भी बहुत प्यारा और मुनफरिद है, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो, सलामत रहो, खुश रहो। मैं पेरिस फ्रांस से आपको प्रोग्राम सुन रहा हूँ भाईजान, आपको और आपके साथ आपकी पूरी टीम को मोहब्बत भरा सलाम और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया साइम, आप हमें फ़्रांस से सुनते हैं और आपकी मोहब्बतें हमें पहुंचती हैं यहाँ तक, आपकी मोहब्बत है। इल्मा अल्तमश हैं, इनका कहना है कि मैंने माना के मसला हूँ मैं, तुम तो माहिर हो हल करो मुझको। क्या बात है जी, मसला हूँ तो निगाहें ना चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से हल कर दो, मुझ पे छा जाओ किसी आग की सूरत जाना, और मेरी जात को सूखा हुआ जंगल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूं मुकम्मल कर दो, तुम अपने हाथ को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। जुगनू जूनियर हैं, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, नाइस शो, मुनफरिद अंदाज, लाजवाब इंतखाब और बेमिसाल आवाज़, बहुत शुक्रिया। और जुगनू जूनियर कहते हैं कि मरीज़ मोहब्बत उन्हें का फसाना सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शाम अलम का जब आया चिराग सहर बुझ गए जलते जलते, उन्हें ख़त में लिखा था दिले मुस्तरिब है जवाब आया कि मोहब्बत ना करते, तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था बहल जाएगा दिल बहलते बहलते, मुझे अपने दिल की तो परवाह नहीं मगर डर रहा हूँ कि बचपन की ज़िद है कहीं हाय नाजुक मैं मोज आ ना जाए, दिले सख्त जान को मसलते मसलते। क्या बात है जी, इल्मा कराची से हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। जुबिया शफीक ने हमें ज्वाइन किया है, कहती हैं गुड शो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। इसके साथ जुगनू जूनियर कहते हैं कि नवीद भट्टी भी आपको बहुत दुआएं और सलाम पेश कर रहा है, नवीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी दुआएँ हम तक यकीनन पहुँच चुकी हैं, आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर मैं यासर बात कर रहा हूँ पिशावर से।
0: यासर साहब क्या कहना चाहेंगे?
1: बस सर मैं तो एक शो सुन रहा था, उसमें आपका पता चला कि बीमार है, तो यकीन करें मैं रात की ड्यूटी करता हूँ, तो दिल से दुआ दिए कि अल्लाह ताला सारे अर्जे को ठीक ठाक कर दे।
0: आमीन जी आमीन, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे।
1: सर एक बात बताए, वो आपका नाम ने किसने रखा है, दादो नानी जो भी है वो बता दे, और कलर कौन सा पसंद है, फारिग औकात में आप मतलब है कि फुर्सत मिल गए तो क्या करते हैं, और सब स्पेशल ईद वाले दिन जो होते हैं तो उसमें आपका क्या खाना पसंद है कि मुझे ये डिश पसंद है ये बनाए।
0: ये तो आप रिश्ता करवाने वाले सवाल पूछ रहे हैं।
1: नहीं सर, बस मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपका ये पूछी वाला अंदाज मुझे बहुत पसंद है।
0: चलें बहुत शुक्रिया, आपको बताते हैं हम कुछ देर में।
1: थैंक यू सर,
0: बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. मेरी पसंद और नापसंद पूछी जा रही है. मेरा नाम किसने रखा? मेरा नाम वैसे मेरे वालिद साहब ने रखा था. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, शाहिद अंसारी बोल रहा हूँ हैदराबाद से.
0: जी अंसारी साहब, क्या कहना चाहेंगे?
2: आपका मेरा थोड़ा सा यानी खुद साख्ता कुछ हाँ मसला मैं अपनी तरफ से आज आपसे माफी मांगता हूँ. अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको खुश रखे. अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए.
0: कोई बात नहीं अंसारी साहब, कुछ कहना चाहेंगे? कोई शायरी सुनाना चाहेंगे?
2: चले आज मैं सुनाई तो शायरी मुझे आती नहीं है, फिर मैं चला रहा हूँ जो मुझे. एक ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई लोगों ने. तारीफ तो करते हैं सर. ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने.
0: वाह वाह क्या बात है.
2: ठोकर में इस दिल को लिए, तोड़ के तुम तो चल भी दिए. तुमको खबर क्या शहर में उस दिन ईद मनाई लोगों ने.
0: वाह वाह वाह वाह वाह बहुत अच्छे.
2: चलो ज्यादा मुझे माफ कर देगा, सारी अंसारी बोल रहा हूँ हैदराबाद.
0: बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की. आपकी मोहब्बत चाहत. उमर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, उम्मीद है आप ठीक होंगे. हमेशा की तरह बहुत अच्छा प्रोग्राम, आपकी बातें, आपका अंदाज बहुत ज़बरदस्त है. ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं रही. अब्दुल्ला भट्ट फ्रॉम अबू धाबी. बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, आपने हमारे प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी और आपने मैसेजेस किए, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया. कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम.
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? क्या कहना चाहेंगी?
3: कोई भी सुनाऊंगी.
0: जी सुनाइएगा.
3: की
0: आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलें या करीब आ जाएं या अगर हैंड फ्री लगाइए तो वो उतार दें.
3: जावेद सबा की गजल है.
0: जी
3: कहते ये दिल बहुत उदास है, थोड़ा सा झूठ बोल भारी पड़ेगा सच से भी, हल्का सा झूठ बोल अपनी तरफ से घर के व्यक्ति की दास्तान सच अपनी बात रख कोई अच्छा सा झूठ बोल जीबा है तीन चश्मे स्याह को सफेद झूठ झूठे कहें के हस्ते तमन्ना सा झूठ बोल चीनी सुखन है शीरी बयानी का रख भरम ये भी नहीं कहा था कि कड़वा सा झूठ बोल तन्हाइयों की शाम से दिल डूबने के हैं इस जान लग मरीज से थोड़ा सा झूठ बोल नशा न तोड़ मेरा वो माँ के नशीन हूँ मुझ पे मर मिटा है बस इतना सा झूठ बोल.
0: वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे. और कितने झूठ बोलना चाहेंगी आप मजीद?
3: मैं इस तरह के झूठ में पर्सनली सुनना चाहूंगी लेकिन शायद की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है.
0: चलें बहुत शुक्रिया. इसके अलावा कुछ और सुनाना चाहेंगी?
3: नहीं बस थैंक यू.
0: थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम.
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
4: हमीद गुलार कर रहा हूं सर, रावलपिंडी से.
0: हमीद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, एक लंबा अरसा हो गया आपसे बात किए ना.
0: जी हाँ
4: आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं. आज हम शेर व शायरी कर रहे हैं और आपसे अच्छा इंतखाब और कौन सुना सकता है?
4: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ने वाले हैं. एक कथा और एक नज्म आपने आपकी और तमाम समाजों की नजर है.
0: जी जरूर जरूर.
4: कथा देखिएगा कि दोनों मेरे अपने लिखे हुए हैं कि फूल सहराओं में खिले होंगे, जैसा फूल सहराओं में खिले होंगे चाक दामन के भी सिले होंगे।
5: वाह वाह।
4: फूल सहराओं में खिले होंगे चाक दामन के भी सिले होंगे, और शेर देखिएगा कि इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं।
5: वाह।
4: इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं, आप कहते हैं तो मिले होंगे।
5: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
4: आप कहते हैं तो मिले होंगे, नल तोनवान है पहला कागज। मैंने काफी दफा पढ़ी, मेरा दिल किया वो बकोल मुनव्वर राना के, फिर से मेरे मुंह पे दाने निकल आए, अलमारी से कुछ खत पुराने निकल आए।
5: वाह वाह।
4: हाँ, तो मैं इस तमहीद के तौर पर मैंने नल तोनवान है वो पहला कागज। आपके साथ कभी शेयर किया है मैंने जा साहब ये?
5: मुझे याद नहीं है, आप दोबारा सुना दें अगर आपने सुनाई भी हुई है पहले तो।
4: चले सुनिएगा, मुझे समाप्त कीजिए कि याद है तुमको वो पहला कागज, जैसे पहला कागज नहीं भूलता जाता। याद है तुमको वो पहला कागज जिस पर तुमने कभी अपनी पसंदीदा लिपस्टिक के लाल रंग से एक नए ढंग से लफ्ज़े मोहब्बत लिख के भेजा था।
5: वाह वाह।
4: एक नए ढंग से लफ्ज़े मोहब्बत लिख के भेजा था, वो कब का भीग चुका है, वो कब का भीग चुका है, किसी सीलिंग जगह दीवार की मानिंद खस्ता पड़ा है उस कोरे कागज पर। दाद चाहूंगा आपसे उस कोरे कागज पर, वो लाल रंग का प्लस्तर कई जगहों से उखड़ गया है।
5: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
4: हाँ, बड़ी मेहरबानी। वो कब का भीग चुका है, किसी सीलिंग जगह दीवार की मानिंद खस्ता पड़ा है उस कोरे कागज पर, वो लाल रंग का प्लस्तर कई जगहों से उखड़ गया है। वो मिले तो उससे कहना, वो मिले तो उससे कहना, वो कागज मुझको बहुत महंगा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ा।
5: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
4: आपकी बड़ी मेहरबानी, दुआओं में याद रखिएगा। एक नज़्म मैं बड़ा कम कहता हूँ किसी को, मैं आपको फेसबुक पे देखती हूँ, एक नज्म है उनकी पढ़ी गई है, जान निसार अख्तर की एक नज्म है।
5: जी हाँ।
4: यार क्या नज्म है वो, मैं उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। ये शायद आप पहले आदमी होंगे जिससे मैं फरमाइश कर रहा हूँ इस रेडियो की तारीफ में।
5: अच्छा।
4: हाँ, मैं फरमाइश बड़ी कम करता हूँ। जान निसार अख्तर की एक नज्म है, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, देखे मेरे जहन में, मैं आपको फेसबुक पे भेज देता हूँ।
5: जी ठीक हो गया।
4: उसको पढ़ के ना, मैं बड़ा दिल कर रहा है आज उसको सुनने को।
5: चले जरूर जरूर जरूर।
4: थैंक यू,
5: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
4: अल्लाह।
0: वेल जी, बातचीत के सिलसिले यकीनन चलते रहेंगे, आपकी कॉल्स आपके मैसेजेस भी हम शामिल करते रहेंगे। एक खूबसूरत सा कलाम शामिल किया जा रहा है प्रोग्राम में, सुनते रहें, साथ साथ रहें 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

वेल जना, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जिनके मैसेजेस को हम शामिल करते हैं। राना नज़ाकत नाज फ्रॉम उकाड़ा कहते हैं कि बरसों की चाहत पल भर में भूल गया, उसे मुझसे मोहब्बत थी पल भर में भूल गया। वो वादे वो यादें मोहब्बत की सभी बातें, जब रकीब संग चला तो पल भर में भूल गया। उसकी आँख का कोई टूटा हुआ सपना तो ना था नाज, जो आंख खुली तो पल भर में भूल गया। क्या बात है जी। सलमा है हमारे साथ और सलमा कहती हैं कि कुछ चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं होते, वो सुकून की एक खामोश दुआ होते हैं। वाह वाह, क्या बात है। वाकई कुछ लोग और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर खुशी मिलती है, जिनको देखकर इत्मीनान मिलता है, जिनको देख के ऐसा लगता है कि अब जाके ज़िंदगी में कहीं ठहराव आया, कोई सुकून आया, कोई राहत का एहसास होता है ऐसे लोगों को देख के। कुछ चेहरे वाकई ऐसे होते हैं। सलमा रशीद DHA लाहौर से, इनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम ज़ियानजुम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ सुनी, स्टे ब्लेस्ड, उम्दा सॉन्ग्स, आला शो, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे, आमीन। आमीन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि गाहे बगाहे मैसेजेस कर रहे हैं और मैसेजेस में अपनी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस भेज रहे हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। आरके मुगल हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, मैं सिर्फ आपके शो का इंतज़ार करती हूं। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। दुख तकलीफ़ों परेशानियों को कभी आपका एड्रेस ना मिले। अगर हो सके तो नुसरत अली ख़ान साहब की आवाज़ में ट्रैक ओ जिंद मेरी माही कूक दी मेरे नाराज़ मामू को डेडिकेट कर दें। मेरा नंबर भी ब्लॉक किया हुआ है, आपका शो तो मस्ट ही सुनते हैं। ओके जी, थैंक यू आरके मुगल आपका। और चलें हम कोशिश करते हैं कि इसको प्ले करें। सियालकोटी मुंडा हमारे साथ हैं, मलिक वसीम अवान, और कहते हैं कि जनाब रियाज भट्टी साहब लाहौर वाले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपने सलाम भेजा है अपने अहबाब को, दोस्तों को, यकीनन आपका सलाम सब तक पहुंच चुका होगा। मलिक सलीम अवान हमारे साथ मौजूद हैं।

0: लाख चकले कर आर रही मोरा सैया मुझसे बोलना मोरा सैया मुझसे बोलना। दीजिए काफी है।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप तो अच्छा खासा सुना रही हैं। आप क्यों डर रही थी इसको सुनाने से?
0: मैं सोच रही थी पता नहीं मेरी आवाज बीच में से गायब हो गई तो ध्यान कहना कैसे फंस गई। और आपके लिए बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
1: बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपने कॉल की।
0: जितने बहन भाई आते हैं सबके लिए बहुत सी दुआएं। जुगनू अच्छी शायरियां भेज रहा है और कॉल भी कर दिया करो जुगनू महाराज। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं
1: बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया नीला जी। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
0: थैंक यू
1: जी। थैंक यू।

वेल जी, बातचीत के सिलसिले यकीनन चलते रहेंगे, लेकिन साथ एक खूबसूरत सा गाना, एक खूबसूरत सा गीत आप सबकी समातों की नजर। सुनते रहें साथ साथ रहे FM 101 पे। मुझे जिया अंजुम कहते हैं।

0: ये एक मैसेज आया हुआ है 4471 पे और मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा। बाहर हाल कुछ दवाएं भेजी हुई हैं और आपके मैसेजेस का शुक्रिया जी। ए रहमान है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम नोमान फ्रॉम रावलपिंडी, बेसिकली आई एम साइलेंट लिसनर ऑफ 101, नाइस वॉइस अंजुम भाई, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद हसन है हमारे साथ, कहते हैं कि हवादिस से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बहाना नहीं आता। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
3: मैं नाहिद बात कर रही हूँ कनाडा से।
1: जी नाहिद साहिबा, क्या कहना चाहेंगी?
3: वही जैसे कि सबसे पहले तो तारीफ करूंगी प्रोग्राम की, लेकिन मैंने इनके बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं सुनती हूँ, और लेकिन प्रोग्राम के साथ साथ आपका जो बीजी है मैं
1: जी
3: जब बजता है तो मैं आंखें बंद करके सुनती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जैसे शालामार बाग में किसी बादशाह का एक दरबार सजा हुआ है और कोई मगनिया जो है वो धीरे धीरे चलती हुई अपना हुनर आजमाने के लिए आ रही है।
1: वाह वाह, क्या मंजर कशी की है आपने,
3: मुझे ऐसा लगता है।
1: वाह जबरदस्त, कुछ सुनाना चाहेंगी आप?
3: जी जी, मैंने इसीलिए कॉल की है क्योंकि आपने कहा था कि आज शायरी का प्रोग्राम है, शायरी का आप
1: जी हाँ
3: सुन सकते हैं, तो उसी हवाले से मैंने आपसे बात की है।
1: जी जी सुनाइएगा।
3: ये दो शेर हैं पहले, और फिर उसके बाद अगर आप इजाजत देंगे तो एक गजल के चंद इशार सुनाऊंगे।
1: जी जी जरूर सुनाइएगा।
3: अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए, अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए, दुनिया को हाल ही नहीं दिया भी चाहिए।
1: वाह वाह बहुत अच्छे।
3: ए दिल किसी तरह भी मुझे दस्तयाब कर, जितना भी चाहिए उसे जैसा भी चाहिए।
1: वाह वाह बहुत अच्छे।
3: एक गजल के चंद इशार
1: जी सुनाइएगा, सुनाइएगा।
3: रंजे बे अदाई क्या, जूम आशनाई क्या, रंजे बे अदाई क्या, जूम आशनाई क्या, माँ सिवाए तन्हाई इश्क भी कमाई क्या।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
3: खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, बे यकीन रफाकत में वसल क्या जुदाई क्या।
1: वाह वाह वाह।
3: जब्त से तकल्लुम तक सब का सब ही धोखा है,
1: आहा।
3: जब्त से तकल्लुम तक सब का सब ही धोखा है, दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। Very nice.
3: जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता,
1: आहा, आहा।
3: जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता, दश्ते राय गानी में खाक भी उड़ाई क्या।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
3: मैं लहू की सरगोशी, मैं लहू की सरगोशी, सुन मुझे अकेले में शोरों गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या।
1: वाह वाह वाह वाह वा। बहुत अच्छा।
3: आप भर के लाए हैं आग अपनी झोली में।
1: ओहो वाह।
3: आप भर के लाए हैं आग अपनी झोली में, दिल जले के घर जाके इश्क में दुहाई क्या।
1: वाह वाह वाह वाह बहुत अच्छे।
3: ओ किसको खौफे रुसवाई, इश्क सर का सौदा है। किसको खौफे रुसवाई, इश्क सर का सौदा है। जान पर बने जिसकी उसको जग हंसाई क्या।
1: क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छे।
3: अच्छा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो प्रोग्राम होता है दो से चार जो पोएट्री के प्रोग्राम हुआ करते थे किसी जमाने में, आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आपको शायरी पढ़ने पे अबूर है, शायरी आप समझते भी हैं जानते भी हैं, आप वो वाला प्रोग्राम क्यों नहीं करते।
1: वो सोने का वक्त होता है ना।
3: जो लोग करते हैं अब तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं उस प्रोग्राम में।
1: चलिए उसके लिए भी हम देखते हैं, अगर मुमकिन हो सका तो वो भी शायद किया जाए, किया जाए।
3: आप कर सकते हैं, आपको चाहिए कि वो वाला प्रोग्राम करें।
1: चलें, जरूर,
3: और एक बात मैं आपको बताना ही भूल गई कि जो अब ये जो आप रात की बात की ना आपने सोने का, तो मैं आपके प्रोग्राम को दिन की रोशनी में सुन रही हूँ।
1: क्या बात है, आप कनाडा में मौजूद है ना इस वजह से।
3: जी मैं कनाडा में मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरे 12 घंटे का फर्क है, जो आपका रात का टाइम है भी यहाँ पे दिन का टाइम है।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें बहुत शुक्रिया नाहिद आपका, आपने कॉल की और हमारा वक्त खत्म हो गया है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी।
3: थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
0: सामीन आपका और हमारा साथ आज के प्रोग्राम का यहीं तक था, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोशिश करते रहिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें कि अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की, खुसूसन अपने वालिदैन की दुआओं में आबाद रहें। और मेरा ये भी मानना है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआ करता होगा और उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। नाम लेकर ज़िया अंजुम ज़रूर याद कीजिएगा अपनी दुआओं में। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर बात और मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

101 FM。

101 FM。

0: गजल का मतला अर्ज है।
1: अब न वो मैं हूं न तू है,